नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 7 मई 2026 वार गुरुवार का दिन है। साथ ही साथ यूँ हम देख पा रहे हैं कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर, और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और अंजलि पारशर। इसी क्रम में श्रोता साथियों, आगे बढ़ते हुए हम रुख करेंगे हमारी परंपराओं लोक राजस्थानी गीतों से जुड़ा कार्यक्रम लोक संगीत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर राजस्थानी गीतों के साथ में। श्रोता साथियों, फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मेरे साथ में यानी कि आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल के साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर। आगे बढ़ते हुए हम सुन पाएंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से, इसे लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 10:00 बजे। फिर इसी क्रम में हम रुक करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, आप अपने फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आराधना से।

0: जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपने अपने मई देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
4: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोन ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हम रेडियो हो आपनो सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु गणमान स्वागत करा हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हासिल थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो बहन बोनो आज हमारे कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है अजोला हूँ कहवाय है ने आ हरते अपने पशु बल्ले पूरक आहार ने तौर माते काम आवे है। तो अना विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आप तक घना कनी बातें थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू कर इन्हें पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर अपनी बातें। तो बहन बोनो आप हमरते रहसु आपू रेडियो अपनी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: भाइन बोनू कितना ऐसा पुरुना गीत बात एक वक्त फिर आप सबनों घने मन स्वागत करो हाँ हमारे आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी में जिम की भाइन बोनो गीत के पहले आपने विषय बता दू तू की आज आप बातचीत करवा वाला हाँ अजला घास ने नहीं ने तो अण विषय माते बातचीत करवा बल्ले आज आप कार्यक्रम तक जुड़ी रहे मनीष जी सर तो सबसे की पहले अपने हमरी लाना नहीं बात है मोरे कर आपकी बात है सर नमस्कार
1: नमस्कार अंजलि जी
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में
1: आपका और वागड़ रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद
0: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम खेती बाड़ी से जुड़ रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है अजोला घास को लेकर तो सर सबसे पहले आप कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों को यही बताइए कि अजोला घास आखिरकार है क्या
1: जी बिल्कुल तो मैं हमारे किसान साथियों को बताना चाहता हूँ कि अजोला जो है वो पशुधन स्वास्थ्य और पोषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जैसा कि अभी गर्मी के दिन है और हमारे पशुधन को पोषण के रूप में हरा चारा आहार में बहुत ही कम या नहीं के बराबर मिल रहा है जिससे उनका पोषण कम होता है और पोषण कम मिलने से उनकी उत्पादकता और जीवन निर्वाह में कुछ समस्याएं आ सकती है ऐसी परिस्थितियों में जब हरा चारा उनके आहार में उचित मात्रा में नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे अजोला हमारे लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होता है
0: जी।
1: अजोला जल की सतह पर मुक्त रूप से तैरने वाला एक काई या फर्न है ये छोटे छोटे समूह में गुच्छे की तरह पानी के ऊपर तैरता रहता है
0: बिल्कुल
1: ये काफी हद तक गर्मी को सहन करने वाला होता है और अजोला जल में बड़ी तेज गति से बढ़ता भी है
0: बिल्कुल सर
1: अजोला की जो उत्पादन लागत होती है वो बहुत ही कम यानी कि सिर्फ एक बार हम 200 रुपए खर्च कर ले तो उसके बाद हम लगातार अजोला का उत्पादन अपने यहाँ ले सकते हैं
0: बिल्कुल सर आपने सही कहा जैसा कि आपने बताया कि अजोला क्या है और किस तरीके से इसको उगाने में हमारे किसान भाई बहनों को लागत भी कम लगानी पड़ती है तो सर यही अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इसकी गुणवत्ता क्या रहती है और किस तरीके से इसकी विधि है जो हमारे किसान भाई बहनों को ध्यान होनी चाहिए ताकि वो भी अपने खेत में या अपने घर पर अजोला का उत्पादन कर सके
1: अजोला की यदि गुणवत्ता की बात करें पहले हम तो अजोला बहुत ही सस्ता सुपाच्य
0: जी
1: पौष्टिक और पूरक पशु आहार के रूप में जाना जाता है
0: बिल्कुल
1: इसे खिलाने से पशुधन के दूध में वसा और वसा रहित आहार खाने वाले पशुओं की तुलना में सामान्य से अधिक वसा पाई जाती है ये दूध में वसा के प्रतिशत को भी बढ़ाता है कई बार देखा गया है कि अजोला पशुधन में बांझपन के निवारण में भी उपयोगी साबित हुआ है क्योंकि इसको खिलाने से कई प्रकार के जो पोषक तत्व जिनकी पशुधन के शरीर में कमी हो जाती है वो उनकी पूर्ति करता है
0: जी हाँ।
1: इसे खिलाने से पशुधन का शारीरिक विकास भी बहुत अच्छा होता है मुख्य रूप से ऐसे पशुधन के लिए अजोला का उपयोग बड़े स्तर पर किया जाता है जिन्हें मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है अजोला में प्रोटीन आवश्यक अमीनो एसिड विटामिन विटामिन ए B12 और बीटा कैरोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं और साथ ही खनिज लवण कैल्शियम फास्फोरस पोटेशियम आयरन कॉपर मैग्नीशियम इस तरह के कई खनिज लवण भी इसमें उचित मात्रा में पाए जाते हैं
0: जी हाँ।
1: इसमें शुष्क मात्रा के आधार पे 40-60% प्रोटीन होता है 10-15% खनिज और 7-10% अमीनो अम्ल जीव सक्रिय पदार्थ और पॉलीमर्स आदि होते हैं
0: जी हाँ।
1: इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा कम होती है जिसकी वजह से ये बहुत ही आसानी से पशुधन के शरीर में पचकर उन्हें जल्दी से जल्दी पोषक उपलब्ध कराता है
0: जी हाँ।
1: तो ये हमारे बकरियों गाय भैंस मुर्गी इन सभी के लिए जो है एक आदर्श पोषक
0: आहार है
1: दुधारू पशुओं पर किए गए कुछ प्रयोगों से ये पता भी चला है कि यदि दैनिक आहार में अजोला प्रतिदिन उन्हें दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में भी 10-15% की वृद्धि देखी गई है
0: बिल्कुल
1: अब हम अजोला उत्पादन की विधि की यदि बात करें कि किस तरह से अजोला का उत्पादन हम अपने घर या खेत में कर सकते हैं और जो हमारे पशुधन के लिए काम आएगा, तो इसके लिए हमें एक गड्ढा बनाना होता है जो 1 फीट गहरा होगा, 10 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा, ये गड्ढे का आकार होगा। इसमें हम किसी तरह का पॉलीथीन या कोई अन्य चीज या इसी तरह से एक पक्का गड्ढा भी बनाया जा सकता है जो स्थायी रूप से हमेशा जो है हमारे काम आता रहेगा।
0: बिल्कुल,
1: यदि हमारे किसान भाई सक्षम है तो, अन्यथा वो ऐसी किसी चीज का प्रयोग करें जिससे गड्ढे में जो पानी भरा जाना है वो जमीन में न उतरे।
0: जी बिल्कुल।
1: इसके बाद हम वहां पे उसको बिछा के उसको पानी से पूरा भर देते हैं और इसमें 6 किलोग्राम मिट्टी और 6 किलोग्राम ताजा गोबर मिला के इस पानी के अंदर उस घोल को डाल देना चाहिए।
0: जी।
1: इसके बाद 1 से 1.5 किलो अजोला की जो काई है या फर्न है उसको उसके ऊपर डालना है। सही स्थिति रहने पे ये बहुत तेज गति से बढ़ता है और 3 से 5 दिन में ही दुगना हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: अब यदि हम अजोला उत्पादन करना चाहते हैं तो इसके प्रबंधन की विधियां भी जानना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि कई बार ये होता है कि अजोला उत्पादन शुरू होने के कुछ समय के बाद उसका उत्पादन या तो धीमा हो जाता है या मिलना बंद हो जाता है।
0: जी जी।
1: जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को लगता है कि कहां कौन सी समस्या है जिसकी वजह से अब इसका उत्पादन हमको नहीं मिल पा रहा है। तो पहला है कि अजोला की क्यारी में हर 3 महीने में मिट्टी और पानी को बदल देना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: इसकी अच्छी वृद्धि के लिए हम इसमें हर 15 दिन में 1 से 2 किलो गाय का ताजा गोबर घोल के डालते रहना चाहिए। हर महीने 10 किलोग्राम मिट्टी क्यारी से निकाल के इसकी जगह ताजी मिट्टी डाल देना चाहिए। अजोला क्यारी से निकाली गई मिट्टी को हम हमारी पोषणवाड़ी या खेत में खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
0: जी जी।
1: इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होती है जो हमारे पौधों के लिए बहुत जरूरी है।
0: जी जी।
1: निकाले गए अजोला को साफ पानी से धोकर दाने बाटे या उनको खिलाए जाने वाले आहार के साथ मिला के देना चाहिए। इसको धोते समय ये जरूर ध्यान रखें कि इसको 2 से 3 बार धो लें अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें हल्की सी गोबर की गंध होती है तो कई बार इसके कारण पशुधन उसको नहीं खाते। तो इसको 2 या 3 बार धोने के बाद कुछ मिनट के लिए छांव में फैलाकर रख दें जिससे इसमें से गंध निकल जाए।
0: बिल्कुल।
1: इसमें जिस आकार का गड्ढा हमने बनाया है या अजोला की क्यारी बनाई है इसमें हर दिन हम 1.5 से 2 किलो अजोला रोज निकाल सकते हैं और 24 घंटे में इतना ही अजोला वापस उसमें उत्पादित हो जाता है।
0: बिल्कुल सर।
1: गर्मियों में जब अजोला का उत्पादन बढ़ जाए तो इसे साफ करके छांव में सुखा कर रख सकते हैं और जब हमें जरूरत हो तब ये सूखा अजोला भी हम अपने पशुधन के चारे बाटे या दाने में मिला के उनको दे सकते हैं, तो ये भी उतना ही उपयोगी होता है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से अजोला को बनाने की विधि है और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका हमारे श्रोता साथियों को ध्यान में रखने की जरूरत है।

0: एक किलो अजोला की गुणवत्ता एक किलो खली के बराबर होती है,
1: बिल्कुल,
0: जो हम हमारे पशुधन को देते हैं। इसी के साथ यदि देखें तो पशुओं के पेशाब में खून की समस्या, जो कि फास्फोरस की कमी के कारण पशुधन में होती है, ऐसे पशुओं को भी अजोला खिलाएं तो यह समस्या दूर होती है।
1: बिल्कुल,
0: अजोला पशुओं के लिए एक जैविक और आदर्श पूरक आहार है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अजोला जो है वो पोषण का बहुत ही सस्ता और बहुमूल्य हमारे पास समाधान है।
1: बिल्कुल,
0: जिसमें हमें किसी तरह की कोई विशेष मेहनत की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक बार अजोला इकाई की स्थापना यदि कर दी जाए और उसके प्रबंधन के बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए तो हम लगातार हमारे पशुधन के लिए अजोला का उत्पादन अपने घर में ही छोटी सी जगह में कर सकते हैं और हमारे पशुधन के उत्पादन और स्वास्थ्य में जो है इसके लाभों को देख सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आज कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे श्रोता साथियों को ये बताया है कि अजोला क्या है, किस तरीके से इसका उत्पादन हमारे श्रोता साथियों को करना है, साथ ही पशुओं के लिए किस तरीके से पूरक पोषक आहार के तौर पर ये कार्य करता है। तो सर, बातें ढेर सारी हो गई है, आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी, आपका और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: બહેન મુનુ જેમકી હવે આપણે વાસમાં મનીષજી સર જોડે તક હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા થી કી ઘણા કાની વાતે બતાડી હે કે હરતે આપણે આપણે ઘરે જ અજોલા ઘાસ લગાડી શક ને આ હરતે આપણે પશુ બલ્લે પૂરક પોષક આહાર ની રૂપ મે કામ આવે હે। તો આશા કર હા ભાઈન બોનો કે આપને આ હંગરી વાતે ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ તકી સૂટા પડવાનું। તો સૂટા તો પડા, પણ સાથે પહેલા હમરી લાઈક ઓર કિતને મોરે પડા સૂટા।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि हमें हमारे बच्चों को उनके जीवन में सिखाना जरूरी है कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं और जो काम करने वाले होते हैं उनका हमें सम्मान करना है, क्योंकि हमारे समाज में काम को बड़े और छोटे में बांटने की एक पुरानी सोच रही है।
0: जी जी।
1: लेकिन बदलते समय के साथ कशिश यह समझना और सीखना जरूरी हो गया है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, चाहे वह सफाई कर्मचारी का कार्य हो, खेत में मजदूरी करने का कार्य हो, किसान का हो या किसी दुकान का सामान बेचने वाला। हर व्यक्ति अपने कार्य से समाज की नींव को मजबूत करता है। बच्चों को शुरू से ही यह शिक्षा देना बहुत जरूरी है कि सभी प्रकार के काम महत्वपूर्ण हैं और सभी काम करने वालों का सम्मान करना भी हमें चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोताओं को गीत सुनवाएं हम पहले।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहेंगे हम कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि हर काम छोटा या बड़ा नहीं होता और सभी प्रकार के काम और करने वालों का हमें सम्मान करना चाहिए। जैसा कि गीत से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें रही श्रोता साथियों, अब यही अगर आपको बताएं तो कार्य का महत्व समझ और सोच पर निर्भर करता है। अंजलि जी, हर कार्य समाज के लिए किसी न किसी रूप में योगदान देता है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि डॉक्टर जीवन बचाता है तो सफाई कर्मी बीमारी को दूर रखने में मदद करता है। शिक्षक का कार्य ज्ञान देता है श्रोता साथियों, तो बड़े ही लोहार मिस्त्री जैसे लोग हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं।
1: जी हाँ
0: साथियों, अगर कोई भी कार्य न किया जाए तो समाज की व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए हमें बच्चों को ये समझाना होगा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ ही हमें बच्चों को ये भी सिखाना है अंजलि जी, कि हमें किसी व्यक्ति का मूल्य उसके कपड़ों, पढ़ाई या फिर पेशे से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी से आंकना चाहिए। साथियों, एक ईमानदार सफाई कर्मी, एक मेहनती दूध वाला और एक कड़ी मेहनत करने वाला किसान, ये सब समाज के असली हीरो होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: बच्चों को यह भावना दिल में बसानी चाहिए कि हर मेहनतकश इंसान सम्मान के योग्य होता है।
1: बिल्कुल कशिश, यही बात करें श्रोता साथियों, तो शुरुआत घर से होनी चाहिए। यानी कि कशिश, जब बच्चा घर में काम करने वाले लोगों को भैया, दीदी या उनके नाम से आदर पूर्वक बुलाता है, तो वही आदत स्कूल और समाज में भी आती है।
0: जी।
1: उन्हें बताया जाए कि स्कूल में झाड़ू लगाने वाली आया या चौकीदार अंकल भी स्कूल की व्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। हम बच्चों को महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, बाबा आमिटे जैसे महान लोगों की कहानियां सुनाकर समझा सकते हैं कि उन्होंने स्वयं अपने हाथों से छोटे छोटे कार्य किए और कभी भी उसे नीचा नहीं समझा। इससे बच्चों के मन में काम करने वालों के प्रति सम्मान पैदा होता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, इसी के आगे अगर बात करें श्रोता साथियों, तो फिल्मों और किताबों का इसमें आप सहारा ले सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: यानी कि आपको अपने बच्चों को ऐसे फिल्में दिखाना चाहिए जो मेहनत करने वालों का आदर करना सिखाए, जैसे कि बागबान हो गया, तारे जमीन पर फिल्म हो गई या फिर कोई सीक्रेट सुपरस्टार। साथियों, बच्चों की सोच को सकारात्मक दिशा में ये फिल्में जो हैं वो ले जा सकती है, इसलिए ये फिल्में आप अपने बच्चों को जरूर दिखाएं।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही नैतिक कहानियों की किताबें आप अपने बच्चे को खरीद कर दे सकते हैं। बाल साहित्य और चित्र पुस्तकों के माध्यम से भी ये शिक्षा दी जा सकती है अंजलि जी।
1: जी हाँ।
0: इसे के आगे अगर बात करें श्रोता साथियों, तो माता पिता होने के नाते हमें खुद ही उदाहरण बनना होगा। अंजलि जी, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: अगर ऐसे में हमारे माता पिता किसी रिक्शे वाले, सफाई कर्मी या फिर हेल्पर से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, या कह सकते हैं कि उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो बच्चे भी यही सीखेंगे।
1: बिल्कुल।
0: इसके विपरीत दोस्तों, आपको उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।
1: जी।
0: इसके विपरीत अगर आपके बच्चे आपको उनके प्रति व्यवहार अच्छा करते हुए देखेंगे, उन्हें धन्यवाद कहते हुए दिखाई देंगे या फिर आप उन्हें सम्मान दे रहे हैं, तो बच्चे भी यही सीखेंगे।
1: बिल्कुल।
0: माता पिता को स्वयं भी काम करने वालों के प्रति अंजलि जी सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। इसी के साथ ही विद्यालय में भी ऐसे पाठ हो श्रोता साथियों, जो बच्चों को श्रम का सम्मान करना सिखाए।
1: जी हाँ।
0: बाल सभाएं, नाट्य प्रस्तुतियां और रोल प्ले के माध्यम से भी ये सिखाया जा सकता है कि हर कार्य की अपनी एक गरिमा होती है।
1: इसी के साथ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि बच्चों को अपने छोटे छोटे कार्य स्वयं करने के लिए प्रेरित करें, जैसे अपना बेग खुद रखना, अपने जूते पॉलिश करना, खाना खाने के बाद प्लेट हटाना। इससे वे श्रम का महत्व समझेंगे और दूसरे के कार्यों को छोटा नहीं समझेंगे। श्रोता साथियों, जब कोई बच्चा पूछे कि मम्मी वो अंकल कूड़ा क्यों उठाते हैं, तो उन्हें डांटना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से समझाना चाहिए कि वो समाज को साफ करने का जिम्मेदारी भरा काम कर रहे हैं और उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए। इस तरीके से कशिश कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोता साथियों से चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले कशिश हम ढेर सारी बातों को जान ही पा रहे हैं कि किस तरीके से हमें बच्चों को ये बताना है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है और हमें हर काम करने वाले व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, समाज में हर व्यक्ति और उसका कार्य महत्वपूर्ण है। अगर हम बच्चों को ये शिक्षा देंगे कि किसी का कार्य कभी छोटा नहीं होता और हर काम करने वाले का सम्मान हमें करना चाहिए, तो वे बड़े होकर एक समझदार, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। इस सकारात्मक सोच की शुरुआत हमें आज ही से करनी होगी।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो दोस्तों, सम्मान देना इंसानियत की पहली पहचान है, ये भी आप अपने बच्चों को बताएं।
0: बिल्कुल
1: अंजलि जी, जब बच्चे किसी काम करने वाले को नाम से बुलाते हैं, नमस्ते करते हैं या फिर मुस्कुराते हैं, तो उसमें इंसानियत झलकती है।
0: बिल्कुल
1: ये छोटी बात है श्रोता साथियों, दूसरों को बहुत अच्छा महसूस कराती है और बच्चे के अंदर भी करुणा और संवेदना बढ़ाती है।
0: बिल्कुल
1: इसी के साथ ही बच्चों को आप ये सिखाएं कि कोई भी काम करने वाला नीचा नहीं होता। जाति, कपड़े या फिर काम के आधार पर किसी को कमतर आंकना बहुत गलत बात है।
0: जी हाँ,
1: इस बात को या फिर इस सोच को अगर बचपन से ही रोका जाए श्रोता साथियों, तो समाज में समानता और भाईचारा ऐसे ही बढ़ता रहेगा। इसी के साथ ही स्वावलंबन और आत्म सम्मान को भी बढ़ावा दे, यानी कि जब बच्चे अंजलि जी खुद छोटे छोटे काम करना सीख जाते हैं, जैसे कि जूते पहनना, पानी भरना या फिर स्कूल का बैग तैयार करना, तो उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान आता है।
0: बिल्कुल,
1: इससे वे दूसरों की मेहनत को भी समझने लगते हैं श्रोता साथियों।
0: इसी के साथ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि बच्चों को हमें सिखाना है कि कोई इंसान क्या काम करता है, उससे ज्यादा जरूरी है कि वह कितना ईमानदारी से कार्य करता है। चाहे वो फल बेचने वाला हो या इंजीनियर हो, अगर वो अपने काम को बेहतर और ईमानदारी से कर रहा है तो प्रशंसा का पात्र है। घर में काम करने वाले जैसे कि मैं, ड्राइवर, मालिक को नौकर नहीं बल्कि सहयोग की कहें। बच्चों के मन में ये बात बैठानी चाहिए कि ये लोग हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, इसलिए उनका विशेष आदर होना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: बच्चों को थैंक यू या धन्यवाद कहना सिखाना है कशिश, एक छोटी सी पर बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण आदत है। ये आदत उनके व्यक्तित्व को विनम्र बनाती है और दूसरों को सम्मानित भी महसूस कराती है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, स्कूलों और समाज में मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस जैसे अवसरों पर बच्चों को प्रेरक भाषण, चित्रकला या नाटक के जरिए सिखाना चाहिए कशिश हमें कि श्रमिकों का हमारे जीवन में क्या योगदान है।
1: बिल्कुल
0: बच्चों से हफ्ते में एक दिन घर के कुछ काम जरूर करवाएं, जैसे झाड़ू लगाना, पौधों को पानी देना, जूते साफ करना। यह उन्हें श्रम का महत्व और श्रमिकों की मेहनत समझाने का व्यवहारिक तरीका हो सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें श्रोता साथियों, तो बच्चे जब स्कूल में खेल के मैदान में किसी सफाई कर्मी या फिर गार्ड के बच्चे को अपने साथ खेलने या फिर बैठने से मना करते हैं, तो वही भेदभाव की भावना जन्म लेती है।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में अभिभावकों और शिक्षकों को ऐसे मौकों पर तुरंत उन्हें समानता का पाठ पढ़ाना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: इसी के साथ दोस्तों बताएं तो जब बच्चे घर के काम और हर काम करने वाले का सम्मान करना सीख जाएंगे, तो वे बड़े होकर एक ऐसा समाज बनाते हैं जहाँ बराबरी, भाईचारा और करुणा हो, और यही हमारी असली पूंजी है अंजलि जी।
0: जी हाँ,
1: तो इस तरीके से श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि बचपन ही वही समय होता है जब इंसान की सोच, भावनाएं और संस्कार आकार लेती है अंजलि जी। यदि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि हर काम की अपनी गरिमा होती है, हर काम करने वाला सम्मान के योग्य है, तो हम एक ऐसे समाज की नींव रखेंगे दोस्तों, जहां किसी को उसके काम के आधार पर छोटा या फिर बड़ा नहीं समझा जाएगा।
0: जी बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि साफ सफाई करने वाला हो या खाना बनाने वाला, किसान हो या ड्राइवर, सभी समाज की गाड़ी को चलाने वाले पहिए हैं। अगर इनमें से एक भी ना हो दोस्तों, तो जीवन हम देखेंगे कि हमारा रुक सा जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए जरूरी है कि बच्चों के मन में सम्मान, संवेदना और समानता की भावना बचपन से ही विकसित की जाए। अंजलि जी, हम सबका यह कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को ये समझाएं कि काम कोई भी छोटा नहीं होता, मेहनत करने वाले हाथ कभी भी कमजोर नहीं होते। यही सोच हमारे बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाएगी साथियों, और हमारे समाज को और भी अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और मानवीय बनाएगी।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम सच्चा बचपन में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें रही हैं। आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
1: जी बिल्कुल,
0: क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन हमारा यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

तके निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पेरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बात होने वाली है कि नींद की प्राकृतिक लय को बहने दो। कहने का तात्पर्य ये श्रोता साथियों कि जो व्यक्ति रात की शांति में सुकून से सोना सीख जाता है, वही दिन के संघर्ष में मजबूती से खड़ा रह पाता है।
0: जी हाँ,
1: यानी कि आज का समय भाग दौड़, तनाव, मोबाइल और कृत्रिम चमक से भरा हुआ है। हर कोई आगे बढ़ने की दौड़ में इतना व्यस्त हो गया कशिश कि उसने अपने शरीर और मन की सबसे बड़ी जरूरत नींद को ही नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है।
0: बिल्कुल,
1: लोग देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, काम करते हैं, वेब सीरीज देखते हैं और फिर सुबह थकान, चिड़चिड़ापन और तनाव के साथ उठते हैं। धीरे धीरे ये आदत शरीर की प्राकृतिक लय को बिगाड़ देती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम युवा साथियों से ढेर सारी बातें जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शुरुआत में जैसा कि मनोरंजन करना कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना एक गीत यहाँ पर सुनवाए साथियों को पहले।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। अब बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और विषय के बारे में भी हम आपको बता ही चुके हैं कि बात कर रहे हैं कि नींद की प्राकृतिक लय को हमें बहने देना है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले हमारे युवा साथियों को ये बताया था कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सबसे ज्यादा जिस चीज की अनदेखी कर रहे हैं वह है हमारी नींद। दोस्तों, मोबाइल की चमकती स्क्रीन, देर रात तक चलने वाली चैटिंग, सोशल मीडिया, वेब सीरीज और गेमिंग और साथ ही लगातार काम या पढ़ाई का दबाव, इन सब ने हमारी नींद को कई हद तक प्रभावित किया है।
1: जी हाँ,
0: या फिर कहें कि नींद की प्राकृतिक लय को ही बिगाड़ दिया है। जागृति जी, हम देखते हैं कि बहुत से युवाओं को ये लगता है कि कम सोना मेहनती होने की निशानी है।
1: जी हाँ,
0: लेकिन सच तो ये है कि जो व्यक्ति अपनी नींद को खो देता है वह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा, एकाग्रता और साथ ही खुशी और स्वास्थ्य को भी खोने लगता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रकृति ने इंसान के शरीर को एक निश्चित लय के साथ बनाया है। सूरज उगने पर जागना और रात होने पर आराम करना हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने इस लय को तोड़ दिया है। यही कारण है कि आज युवाओं में अनिंद्रा, तनाव, मानसिक थकान और कमजोरी तेजी से बढ़ रही है। कहा गया है कि प्रकृति की चाल अपनाएंगे गहरी नींद का सुख पाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: कहने का तात्पर्य ये श्रोता साथियों कि बहुत से लोग सोचते हैं कि नींद केवल थकान मिटाने के लिए होती है, जबकि सच्चाई ये है कि नींद हमारे शरीर और दिमाग को दोबारा ऊर्जा देने का सबसे बड़ा माध्यम भी है।
0: बिल्कुल,
1: जब हम सोते हैं तब शरीर खुद को ठीक करता है, दिमाग नई ऊर्जा प्राप्त करता है और मन शांत होता है।
0: जी हाँ,
1: यदि किसी व्यक्ति की नींद पूरी नहीं होती तो उसका असर उसके व्यवहार, सोचने की क्षमता और स्वास्थ्य पर साफ साफ दिखाई देने लगता है। वो जल्दी गुस्सा करता है, निर्णय लेने में कमजोर होता है और छोटी छोटी बातों से परेशान रहने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: आज के युवा रात भर जागकर मोबाइल चलाते हैं और इसे आधुनिकता समझते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि ये आदत धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य को कमजोर कर रही है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ युवा साथियों, जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर केवल शांत नहीं होता बल्कि भीतर कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहा होता है, जैसे कि जो दिमाग है वो दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है। जागृति जी,
1: जी हाँ,
0: शरीर की कोशिकाएं खुद को ठीक करती है, थकान दूर होती है, हार्मोन संतुलित होते हैं, याददाश्त हमारी मजबूत होती है और मानसिक तनाव कम होता है। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि नींद शरीर की प्राकृतिक दवा है। अगर किसी युवा की नींद पूरी नहीं हो रही है तो उसका सीधा असर, जैसा कि आपने बताया, कि हमारे व्यवहार, हमारी निर्णय क्षमता और भावनाओं पर दिखाई देता है। जागृति जी, दोस्तों, प्रकृति ने हर चीज एक निश्चित लय में तैयार की है। जैसे कि सूरज जो है वो समय पर उगता है, पक्षी सुबह चहकाते हैं, पेड़ पौधे दिन और रात के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं और मौसम अपने समय पर बदलता रहता है। जागृति जी,
1: जी हाँ,
0: इसी तरह श्रोता साथियों, हमारे शरीर की भी एक जैविक घड़ी होती है जिसे वैज्ञानिक भाषा में हम बॉडी क्लॉक कहते हैं। जागृति जी, ये जो घड़ी है वो ये तय करती है कि कब शरीर को जागना है और कब विश्राम की अवस्था में जाना है।
1: बिल्कुल कशिश, और यही अगर प्राकृतिक लय के अर्थ के बारे में हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो शरीर का वो आंतरिक समय चक्र जो दिन और रात के अनुसार काम करता है, जब सूरज निकलता है तो शरीर सक्रिय होना चाहता है और जब अंधेरा होता है तो शरीर आराम मांगता है, इसे ही शरीर की जैविक घड़ी कहते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया था, पुराने समय में लोग जल्दी सोते थे और जल्दी उठते थे, उनका जीवन प्रकृति के अनुसार चलता था श्रोताओं, इसीलिए वे शारीरिक रूप से अधिक मजबूत और मानसिक रूप से शांत रहते थे। आज हम देखते हैं कशिश की कृत्रिम रोशनी और डिजिटल दुनिया ने इंसान को देर रात में भी सक्रिय बना दिया है।
0: बिल्कुल,
1: मोबाइल और लैपटॉप की तेज रोशनी दिमाग को ये संकेत देती है कि अभी दिन है, इसीलिए शरीर नींद के लिए तैयार नहीं हो पाता।
0: जी जी,
1: धीरे धीरे ये आदत प्राकृतिक लय को बिगाड़ देती है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, रात को रात ही रहने दो, नींद की लय को बहने दो, यानी कि कहने का ये तात्पर्य है श्रोता साथियों कि रात को रात ही रहने दो, यानी कि कई बार हम रात को देर रात तक काम करते रहते हैं
0: जी,
1: और हम ये सोचते हैं कि थोड़ी देर और कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन वो हमारे शरीर को थकाता है, इसीलिए अगर रात को रात रहने देंगे और अच्छे से नींद निकालेंगे तो सवेरे हमारी जितनी भी थकान है वो दूर हो जाएगी। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही कशिश कि नींद की प्राकृतिक लय को हम किस तरह से बहने दें, ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से कि नींद की प्राकृतिक लय को हम किस तरह से बहने दें। हमने प्राकृतिक लय क्या होती है उसके बारे में भी जाना था। इसी के साथ हम जानते हैं कि युवाओं में बिगड़ती नींद की समस्या क्या है।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि कशिश आज का युवा सबसे अधिक नींद की समस्या से जूझ रहा है। पढ़ाई का दबाव है, करियर की चिंता है, सोशल मीडिया की लत और देर रात तक ऑनलाइन रहने की आदत, ये सारी चीजें उसे पूरी तरह से बदल रही है। हम देखते हैं कि कई युवा रात के 2-2 बजे तक जागते रहते हैं। सुबह जल्दी उठने के कारण उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और इसका असर उनके स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। आंखों के नीचे काले घेरे, सिर दर्द, कमजोरी और मानसिक तनाव आम हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: सबसे बड़ी बात ये श्रोताओं कि लोग इसे बीमारी नहीं समझते, वे इसे सामान्य आदत मान लेते हैं, जबकि यही आदत आगे चलकर गंभीर समस्याओं का कारण बनती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि आज सोशल मीडिया पर

0: अगर कोई युवा लगातार चिंता, तुलना, असफलता या फिर भविष्य की उलझनों में डूबे रहेंगे तो नींद अपने आप ही प्रभावित होने लगेगी दोस्तों। इसलिए केवल शरीर को ही नहीं मन को भी आराम देना काफी जरूरी है जागृति जी।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग छोटी छोटी बातों पर इतने परेशान हो जाते हैं और इसका कारण उनकी खराब नींद होती है।
0: बिल्कुल,
1: दिमाग को आराम न मिलने से सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है और व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाता है। श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे कि मोबाइल आज जीवन का हिस्सा जरूर बन चुका है, लेकिन यही मोबाइल नींद का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन गया है।
0: बिल्कुल,
1: लोग सोने से पहले घंटों सोशल मीडिया चलाते रहते हैं कशिश, एक वीडियो के बावजूद दूसरा वीडियो और फिर पूरी रात बीत जाती है।
0: जी जी,
1: यह आदत न केवल समय खराब कर रही है दोस्तों, बल्कि दिमाग को भी लगातार सक्रिय बनाए रख रही है।
0: बिल्कुल,
1: और परिणाम स्वरूप व्यक्ति को जल्दी नींद नहीं आती है। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, जबकि सच ये है श्रोता साथियों कि वे अपने दिमाग को आराम करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो इन सब बातों के लिए श्रोता साथियों हमें समय पर सोने की आदत डालनी होगी, सोने से पहले मोबाइल से दूरी बनानी होगी, हल्का भोजन करना होगा, शांत वातावरण रखना होगा और सकारात्मक सोच को अपनाना होगा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि तनाव और सकारात्मक विचार भी नींद को प्रभावित करते हैं, इसलिए सोने से पहले मन को शांत रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, इसी के साथ हम देखते हैं कि नींद का हमारे युवा साथियों के सपनों से भी गहरा रिश्ता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि हर युवा अपने जीवन में बड़े सपने देखते हैं जागृति जी, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई खिलाड़ी तो कोई सफल व्यवसायी।
1: जी हाँ,
0: लेकिन दोस्तों सपनों को पूरा करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, स्वस्थ शरीर और शांत मन का होना भी बहुत जरूरी है। कह सकते हैं कि ये जो दोनों चीजें हैं वो हमें अच्छी नींद से ही मिलेगी।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, नींद कोई समय की बर्बादी नहीं है बल्कि अगले दिन की तैयारी है। तो ऐसे में युवा साथियों आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी सचमुच जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने शरीर की आवाज को सुनना सीखिए।
1: जी हाँ,
0: जब शरीर थक जाए तो उसे आराम दीजिए, जब आंखें नींद मांगे तो उन्हें मोबाइल की रोशनी में मत उलझाइए, जब मन आपका बेचैन हो तो थोड़ी देर प्रकृति के पास बैठ जाइए।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए श्रोता साथियों, प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी हर काम सही समय पर करती है। कई बार जागृति जी, घर का वातावरण भी युवाओं की नींद को प्रभावित करता है, जैसे कि देर रात टीवी, अनियमित दिनचर्या, अत्यधिक दबाव, लगातार तुलना, दोस्तों इन सभी से हमारा जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ सकता है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में परिवार को भी चाहिए जागृति जी कि वे हमारे युवा साथियों को संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते रहें।
1: बिल्कुल कशिश, जैसे कि आपने प्रकृति के बारे में बताया था तो श्रोता साथियों प्रकृति से जुड़ना बहुत जरूरी है। प्रकृति इंसान की सबसे बड़ी शिक्षक है। सुबह की ताजी हवा, पक्षियों की आवाज और सूरज की रोशनी शरीर और मन को संतुलित करती है।
0: बिल्कुल,
1: जो लोग प्रकृति के करीब रहते हैं कशिश, उनकी नींद भी बेहतर होती है। आज हम देखते हैं कि बच्चों और युवाओं की बिगड़ती दिनचर्या केवल उनकी गलती नहीं है, परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि वे स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दें। माता पिता को बच्चों के सामने खुद भी सही आदतों का उदाहरण बनना चाहिए। यदि घर में हर व्यक्ति देर रात तक मोबाइल चलाएगा तो वो बच्चे भी वही सीखेंगे।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोता साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि नींद कोई कमजोरी नहीं है बल्कि जीवन की शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी नींद का सम्मान करता है वही अपने स्वास्थ्य, मन और भविष्य को सुरक्षित रखता है।
0: बिल्कुल,
1: हमें समझना होगा कि शरीर मशीन नहीं है, उसे भी आराम, शांति और संतुलन की जरूरत होती है। यदि हम लगातार अपनी प्राकृतिक लय को बिगाड़ते रहेंगे तो उसका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हम फिर से प्रकृति की ओर लौटें, समय पर सोएं, समय पर जागें और अपने शरीर की आवाज को सुनें। जब हम नींद की प्राकृतिक लय को बहने देंगे तभी हमारा जीवन भी संतुलित और खुशहाल बनेगा। तो श्रोता साथियों, सफलता वही टिकती है जिसके पीछे स्वस्थ शरीर और शांत मन होता है, और शांत मन की शुरुआत अच्छी नींद से होती है।
0: बिल्कुल,
1: तो आपसे कहना चाहेंगे कि नींद को मत ठुकराओ क्योंकि यही जीवन का असली आधार है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है।
1: बिल्कुल,
0: और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो युवा साथियों कार्यक्रम से विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहेंगे यहाँ पर एक प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो युवा साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम युवाओं की आवाज में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने मैं देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM पर।
1: साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है कि असली स्वतंत्रता साहसी होने में छिपी हुई है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि हम देखते हैं कि स्वतंत्रता केवल बाहरी बंधनों से मुक्त होने का नाम नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता तो तब प्राप्त होती है जब मनुष्य अपने भीतर के भय, संकोच, कमजोरी और नकारात्मक सोच से मुक्त हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: बहुत से लोग ये समझते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना, लेकिन श्रोता साथियों, वास्तविकता ये है कि जब तक व्यक्ति डर के बंधनों में जकड़ा रहता है तब तक वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम सच्चा स्वराज में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए क्यों ना हम हमारे दोस्तों को कार्यक्रम का पहला गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है, असली स्वतंत्रता साहसी होने में छिपी हुई है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि अंजलि, साहस वो शक्ति है जो मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। साहसी व्यक्ति ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए कहा जाता है कि असली स्वतंत्रता साहसी होने में छिपी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि जब भी स्वतंत्रता की बात होती है तो हमारे मन में सबसे पहले राजनीतिक आजादी का विचार आता है। लेकिन श्रोता साथियों, क्या केवल बाहरी आजादी ही स्वतंत्रता है? क्या हम सचमुच स्वतंत्र हैं? यदि हम अपने डर, संकोच, गलत परंपराओं और समाज के दबाव के आगे झुक जाते हैं तो ये हमारी स्वतंत्रता नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: वास्तव में स्वतंत्रता का सबसे गहरा अर्थ है अपने विवेक के अनुसार सही निर्णय लेने का साहस। जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा होने का साहस रखता है जागृति जी, जो अन्याय का विरोध करने का साहस रखता है, जो अपनी कमजोरियों का सामना करने का साहस रखता है, वही वास्तव में स्वतंत्र कहलाता है।
0: बिल्कुल,
1: स्वतंत्रता और साहस, श्रोता साथियों, एक ही सिक्के के दो पहलू है। जहाँ साहस नहीं होता है वहाँ स्वतंत्रता भी अधूरी रह जाती है।
0: जी हाँ।
1: कई बार जागृति जी, हम अपने जीवन में सही बातें जानते हुए भी उसे कह नहीं पाते। हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे।
0: जी हाँ।
1: समाज क्या सोचेगा, परिवार कैसे प्रतिक्रिया देगा, और यही डर हमारी स्वतंत्रता को सीमित कर देता है।
0: बिल्कुल अंजलि, साहस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ये केवल युद्ध के मैदान में दिखाई देने वाली वीरता नहीं है, बल्कि सही बात पर अड़िग रहने की क्षमता भी है।
1: बिल्कुल,
0: साहसी व्यक्ति कठिनाइयों से भागता नहीं श्रोताओं, बल्कि उनका सामना करता है। वो जानता है कि चुनौतियां जीवन का हिस्सा है और उनसे डर कर नहीं बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: यदि दुनिया के महान लोगों ने साहस न दिखाया होता तो समाज में कभी बड़े परिवर्तन नहीं आते। हर नई खोज, हर सामाजिक सुधार और हर सफलता के पीछे किसी न किसी का साहस अवश्य होता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए कहा गया है श्रोता साथियों कि साहस है जीवन की पहचान और इसी से हमें सम्मान मिलता है।
1: जी हाँ जागृति जी, एक व्यक्ति तभी स्वतंत्र बनता है जब वह अपने मन के भय को पहचान कर उससे ऊपर उठने का प्रयास करता है। साहस का मतलब केवल युद्ध लड़ना या बड़े बड़े जोखिम उठाना नहीं है। साहस का अर्थ है सच बोलने का साहस, गलती स्वीकार करने का साहस, बदलाव स्वीकार करने का साहस और सही पक्ष में खड़े होने का साहस और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का साहस।
0: जी हाँ।
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि भय मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है। जब कोई व्यक्ति असफलता से डरता है तो वह नए अवसरों की ओर कदम नहीं बढ़ा सकता जागृति जी।
0: बिल्कुल,
1: जब कोई महिला समाज की आलोचना से डरती है तो वह अपनी प्रतिभा को सामने नहीं ला पाती। जब कोई युवा असफल होने के डर से प्रयास नहीं करता तो उसके सपने अधूरे रह जाते हैं।
0: जी हाँ।
1: जब कोई नागरिक अन्याय देखकर भी चुप रहता है तो समाज में गलत शक्तियां मजबूत हो जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भय केवल व्यक्ति को ही नहीं पूरे समाज को कमजोर बना देता है।
0: बिल्कुल,
1: सच्चा स्वराज हमें सिखाता है जागृति जी कि भय की दीवारों को तोड़े बिना स्वतंत्रता का अनुभव संभव नहीं है।
0: जी हाँ अंजलि, जैसे कि भय की बात कर रहे हैं तो भय मनुष्य की प्रगति को रोक देता है और जब व्यक्ति डरता है तो वो अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग भी नहीं कर पाता।
1: बिल्कुल,
0: कई बार लोग केवल इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें असफल होने का डर रहता है। इसी के साथ श्रोता साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि साहस और आत्मविश्वास एक दूसरे के पूरक है। आत्मविश्वास व्यक्ति को विश्वास दिलाता है कि वो कार्य कर सकता है, जबकि साहस उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।
1: जी जी।
0: जब व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा करता है तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी उसे कमजोर नहीं बना पाती, वह चुनौतियों को अवसर के रूप में देखता है। हम कह सकते हैं कि आत्मविश्वास के बिना साहस अधूरा है और साहस के बिना आत्मविश्वास निष्क्रिय है। तो श्रोताओं, दोनों मिलकर व्यक्ति को सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है। आगे भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: to enjoy evergreen melodious songs from over the years to the latest ones. Subscribe to Filmi Gaane channel.
1: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि भय कैसे छीनता है हमारी स्वतंत्रता, यही बात करें तो श्रोता साथियों, इतिहास गवाह है कि दुनिया में बड़े बदलाव उन्हीं लोगों ने किए जिन्होंने सत्य का साथ देने का साहस दिखाया।
2: जी हाँ।
1: सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, कई बार विरोध झेलना पड़ता है, आलोचना सुननी पड़ती है और अकेलापन भी महसूस होता है। लेकिन जागृति जी, जो व्यक्ति सत्य के लिए खड़ा होता है वह भीतर से मजबूत होता है।
2: जी हाँ।
1: सच्चा स्वराज केवल शासन व्यवस्था का विषय नहीं है बल्कि आत्मशासन का विषय भी है। जब व्यक्ति अपने भीतर सत्य, ईमानदारी और साहस को स्थान देता है तभी वह वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र बनता है।
2: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रमाण है सत्य बोलने का साहस। कई बार लोग गलत बात जानते हुए भी चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें विरोध का डर होता है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है वो अपने आत्मसम्मान को बचाए रखता है।
1: बिल्कुल,
2: सत्य बोलने के लिए साहस चाहिए और यही साहस व्यक्ति को भीतर से स्वतंत्र बनाता है। श्रोता साथियों, सत्य के मार्ग पर कठिनाइयां तो बहुत आती हैं, लेकिन अंततः विजय सत्य की होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवन में हर दिन हमें अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं। कुछ निर्णय आसान होते हैं और कुछ कठिन होते हैं। कई बार लोग गलत निर्णय से बचने के डर से कोई निर्णय नहीं ले पाते, लेकिन निर्णय न लेना भी एक प्रकार की कमजोरी है।
1: बिल्कुल,
2: साहसी व्यक्ति परिस्थिति को समझकर निर्णय लेता है और उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करता है। यही गुण उसे दूसरों से अलग बनाता है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, कई लोग साहस और लापरवाही को एक समझ लेते हैं जबकि दोनों में बहुत अंतर है। लापरवाही बिना सोचे समझे जोखिम उठाना है, जबकि साहस का अर्थ है परिस्थितियों को समझते हुए सही निर्णय लेना।
2: बिल्कुल,
1: साहसी व्यक्ति चुनौतियों से भागता नहीं है बल्कि विवेक और धैर्य के साथ उनका सामना करता है। इसलिए साहस हमेशा जिम्मेदारी के साथ जुड़ा हुआ होता है। परिवार बच्चों का पहला विद्यालय है। यदि परिवार में बच्चों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता मिले, अपनी बात रखने का अवसर मिले और गलतियों से सीखने का माहौल मिले तो जागृति जी, उनमें आत्मविश्वास और साहस दोनों विकसित होते हैं।
2: जी हाँ।
1: जो बच्चे हर समय डर के वातावरण में रहते हैं वे निर्णय लेने से घबराने लगते हैं, लेकिन जहाँ विश्वास और संवाद होता है वहाँ साहसी और जिम्मेदार नागरिक तैयार होते हैं।
2: बिल्कुल,
1: सच्चा स्वराज घर से शुरू होता है। परिवार में स्वतंत्र सोच और साहस का वातावरण समाज को मजबूत बनाता है।
2: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि साहस कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे अभ्यास और अनुभव से विकसित किया जा सकता है।
1: जी जी,
2: छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें श्रोताओं, नई चीजें सीखें, कठिन परिस्थितियों का सामना करें और सकारात्मक सोच को बनाए रखें। जब व्यक्ति बार बार चुनौतियों का सामना करता है अंजलि, तो उसका साहस अपने आप ही बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
2: धीरे धीरे वो बड़े से बड़े कार्य करने में सक्षम हो जाता है। तो श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जीवन में सबसे बड़ी कैद किसी जेल की दीवार नहीं है बल्कि मन का भय है। जो व्यक्ति डर, संकोच और नकारात्मक सोच से मुक्त हो जाता है अंजलि, वही वास्तविक स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है।
1: जी हाँ।
2: साहस केवल कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति नहीं है बल्कि अपने सपनों पर विश्वास करने और सही रास्ते पर चलने का संकल्प भी है।
1: बिल्कुल,
2: इसीलिए याद रखिए श्रोताओं, स्वतंत्रता हमें बाहर से नहीं मिलती, उसे हमें अपने भीतर जगाना पड़ता है। जब हम भय को हराकर आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं तभी जीवन का वास्तविक अर्थ समझ पाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: इसलिए श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि हम डर को नहीं साहस को अपना साथी बनाएं, हार को नहीं प्रयास को महत्व दें और परिस्थितियों के सामने झुकने के बजाय उनका सामना करें, क्योंकि वही व्यक्ति सचमुच स्वतंत्र अंजलि जो अपने मन के भय पर विजय पा लेता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। यही बात करें तो असली स्वतंत्रता किसी दस्तावेज, अधिकार या व्यवस्था से शुरू नहीं होती।
2: बिल्कुल,
1: उसकी शुरुआत हमारे मन से होती है। जब हम भय, संकोच, नकारात्मक सोच और सामाजिक दबावों की बेड़ियों को तोड़ने का साहस जुटाते हैं जागृति जी, तभी स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझ में आता है।
2: बिल्कुल,
1: साहस वह प्रकाश है श्रोता साथियों, जो अंधेरे रास्तों में भी उजाला दे देता है। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों से भागना नहीं है, उनका सामना करना है।
2: जी हाँ।
1: गलत के सामने झुकना नहीं है, सत्य के साथ खड़ा होना है और परिस्थितियों को दोष देना नहीं बल्कि बदलाव की पहल स्वयं करनी है।
2: जी हाँ।
1: सच्चा स्वराज तब जन्म लेता है जब व्यक्ति अपने भीतर के डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जागृति जी, जो व्यक्ति साहसी है वही स्वतंत्र है, जो स्वतंत्र है वही रचनात्मक है, और जो रचनात्मक है वही समाज में राष्ट्र को आगे बढ़ाने की शक्ति रखते हैं।
2: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि असली स्वतंत्रता किसी सीमा, किसी पद या किसी सुविधा का नाम नहीं है। असली स्वतंत्रता वो अवस्था है जब व्यक्ति अपने डर से ऊपर उठ जाता है, अपने मन की कमजोरियों को जीत लेता है और सत्य तथा कर्तव्य के मार्ग पर निडर होकर चलने लगता है।
1: बिल्कुल
2: श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि साहस हमें ये विश्वास दिलाता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे।
1: बिल्कुल,
2: याद रखिए जीवन में अवसर उन्हीं को दिखाई देते हैं जो डर के कारण रुकते नहीं बल्कि साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। इतिहास भी उन्हीं लोगों को याद करता है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में हार मानने की बजाय हिम्मत का दामन थामा हो। इसलिए अपने भीतर छिपे साहस को पहचानिए, उसे मजबूत बनाइए और हर दिन स्वयं का बेहतर रूप बनने का प्रयास कीजिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम ये भी कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, यदि आप सचमुच स्वतंत्र होना चाहते हैं तो अपने भीतर के डर को हराइए।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि दुनिया की सबसे मजबूत दीवारें बाहर नहीं, हमारे मन में होती है। जिस दिन हम उन दीवारों को साहस से गिरा देंगे, उसी दिन हमारे जीवन में स्वतंत्रता, सफलता और आत्मविश्वास का नया अध्याय शुरू हो जाएगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज हम संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने जीवन में साहस, सत्य और आत्मविश्वास को स्थान देंगे।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि असली स्वतंत्रता बाहर नहीं, हमारे भीतर छुपी हुई है और उसकी चाबी है साहस। आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में जो बातचीत रही है कि किस तरीके से असली स्वतंत्रता जो है वो साहसी होने में छिपी है, वो हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी। क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज किस कार्यक्रम से विदा लेने का।
2: बिल्कुल,
1: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
2: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। अंत में सिर्फ आपसे यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है।
1: बिल्कुल,
0: रास्ते आसान हो या कठिन, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो साहस के साथ कदम बढ़ाते हैं। इसलिए डर के अंधेरे को छोड़िए, आत्मविश्वास का दीप जलाइए और जीवन की हर चुनौती का मुस्कुराकर सामना कीजिए।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए, असली स्वतंत्रता किसी उपहार में नहीं मिलती, वो साहस के बल पर अर्जित की जाती है।
1: बिल्कुल।

0: प्रकृति जी आपने सही कहा, तो इन्हीं बातों के साथ अब विदा लेते हैं। साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को। नमस्कार।

0: भाई ने बोलू आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह या आपड़े ने कितनी शांति मिले है जीनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
3: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है मस्तिष्क ट्यूमर को लेकर। जानेंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारे दिमाग में असामान्य जो गांठ हो जाती है उसकी पहचान हम कैसे करें और समय पर उसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
2: क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति ट्यूमर शब्द सुनता है तो उसके मन में भय पैदा हो जाता है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता और समय पर पहचान और सही उपचार से कई मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं।
0: बिल्कुल,
2: आज हम जानेंगे कि मस्तिष्क ट्यूमर क्या है, इसके क्या लक्षण है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और समय पर जांच क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी होंगी आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
2: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना श्रोता साथियों को पहले गीत सुनवा दें हम।
2: जी हाँ।
0: बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मस्तिष्क ट्यूमर को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी और कशिश, हम देखते हैं मस्तिष्क यानी कि ब्रेन हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जैसे सोचने, समझने, बोलने, याद करने, चलने फिरने और भावनाओं को व्यक्त करने का कार्य है इसका। जब श्रोता साथियों मस्तिष्क की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और एक गांठ या असामान्य उत्तक का निर्माण करती हैं, तो इसे मस्तिष्क ट्यूमर कहा जाता है। यह गंभीर स्वास्थ्य समस्या है साथियों, जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है।
1: बिल्कुल,
0: समय पर पहचान और उचित उपचार से कई मामलों में रोगी सामान्य जीवन जी सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। और हम देखते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हमारा अच्छा स्वास्थ्य है।
0: बिल्कुल,
1: देखते हैं कि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तभी हम अपने परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र में बेहतर योगदान दे पाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन दोस्तों कुछ बीमारियां ऐसे भी होती हैं जिनके बारे में लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं होती है।
0: जी जी,
1: और ऐसी ही गंभीर बीमारी है मस्तिष्क ट्यूमर। श्रोता साथियों, यह बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों में भी इसके मामले देखे जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हालांकि अंजलि जी, हर ट्यूमर जैसा कि आपने बताया कि कैंसर नहीं होता, लेकिन इसका समय पर पता लगाना और उपचार करना बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, मस्तिष्क ट्यूमर के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, जैसे कि सौम्य ट्यूमर और घातक ट्यूमर।
0: बिल्कुल,
1: अगर सौम्य ट्यूमर की बात की जाए तो यह कैंसर युक्त नहीं होता और इसकी वृद्धि अपेक्षाकृत काफी धीमी होती है। लेकिन यहाँ पर बताना चाहेंगे साथियों को कि यदि समय पर इसका उपचार हो जाए तो रोगी पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकता है। वहीं जो घातक ट्यूमर होता है वो कैंसर युक्त होता है। श्रोता साथियों, इसकी कोशिकाएं तेजी से बढ़ती है और आसपास के ऊतकों को यह नुकसान पहुंचा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: हम कह सकते हैं कि इसका जो उपचार है वो काफी अधिक जटिल होता है।
2: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही बात करें कि मस्तिष्क ट्यूमर क्यों होता है, तो श्रोता साथियों सच्चाई यह है कि अधिकांश मामलों में इसका एक अनिश्चित कारण पता नहीं चल पाता।
1: बिल्कुल,
2: कुछ परिस्थितियां जिसे जोखिम बढ़ा सकती हैं, कुछ आनुवंशिक कारण होते हैं, अत्यधिक विकिरण के संपर्क में आना, परिवार में बीमारी का इतिहास और कुछ दुर्बल चिकित्सीय स्थितियां। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि ट्यूमर किसी के भी जीवन में हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति ने कोई गलती की है। कहना चाहेंगे कि शुरुआती लक्षणों की पहचान करना बहुत जरूरी हो जाता है मनीषा और कशिश, क्योंकि ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है जिसका सही समय पर इलाज न हो तो व्यक्ति की जान भी चली जाती है।
1: बिल्कुल,
2: कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार से हैं, जैसे कि लगातार सिर दर्द होना। सामान्य सिर दर्द ट्यूमर जैसे जुड़े सिर दर्द में अंतर हो सकता है। यदि सिर दर्द लगातार बढ़ रहा है, सुबह अधिक होता है और दवाई से आराम न मिले तो जांच करवाना जरूरी है। बार बार उल्टी आना, खासकर बिना किसी पेट की समस्या के लगातार उल्टी होना एक संकेत हो सकता है। दृष्टि संबंधित समस्या जैसे कि धुंधला दिखाई देना, दो दो चीजें दिखाई देना, देखने की क्षमता कम होना, इसी के साथ हाथ या पैर में अचानक कमजोरी महसूस होना, संतुलन बिगड़ना भी लक्षण हो सकता है। बहुत से मामलों में हम देखते हैं मनीषा और कशिश, याददाश्त और व्यवहार में भी बदलाव आता है। कुछ लोगों में भूलने की समस्या, चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई जैसी समस्या दिखाई दे सकती है। इसी के साथ श्रोता साथियों, यदि किसी व्यक्ति को पहली बार दौरा पड़े तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ सामान्य लक्षण है जिसके माध्यम से हम शुरुआत में इसकी पहचान कर सकते हैं और समय पर इलाज करा सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ यही अगर हम बात करें कि मस्तिष्क ट्यूमर का रोगी पर क्या प्रभाव पड़ता है,
1: बिल्कुल,
0: तो हम देखते हैं कि शारीरिक प्रभाव की बात करें तो कमजोरी, थकान, चलने फिरने में कठिनाइयाँ और दृष्टि और श्रवण की क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: यही अगर हम मानसिक प्रभाव की बात करें तो हम देखते हैं कि तनाव, चिंता, अवसाद, आत्मविश्वास में कमी दिखाई देती है। शारीरिक प्रभाव को देखे तो हम देखते हैं कि काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: परिवार की आर्थिक स्थिति वो हमें बोझ लगने लगती है, साथ ही हमारा सामाजिक जीवन है वो भी प्रभावित होने लगता है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। तो जैसा कि हम बातें हमारे श्रोता साथियों से कर ही रहे हैं मस्तिष्क ट्यूमर को लेकर, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
2: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यहीं अब हमारे श्रोता साथियों के मन में सवाल आ रहा होगा, क्या ये समस्या बच्चों में भी हो सकती है? तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे हाँ, मस्तिष्क ट्यूमर केवल बड़ों की बीमारी नहीं है, बच्चों में भी यह पाया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों में कुछ संकेत हो सकते हैं जैसे कि लगातार सिर दर्द होना, पढ़ाई में अचानक कमजोरी, बार बार उल्टी, संतुलन बनाने में कठिनाई, व्यवहार में बदलाव। ऐसी स्थिति में माता पिता को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि सिर दर्द तो आम बात है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन जब लक्षण लंबे समय तक बने रहे तब जांच आवश्यक हो जाती है।
1: जी हाँ,
0: हमें चिकित्सक परामर्श लेकर पता करना चाहिए कि हमारा जो सिर दर्द हो रहा है उसका कारण क्या है। जितनी जल्दी बीमारी का पता चलता है श्रोता साथियों, उपचार की संभावना उतनी ही बेहतर होती है। इसी के साथ कहना चाहेंगे मनीषा और कशिश कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कि हमारे समाज में आज भी गंभीर बीमारियों को लेकर कई मिथक मौजूद हैं।
1: बिल्कुल,
0: कुछ लोग बीमारी छिपाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। हमें यह सोच बदलनी होगी, बीमारी कोई शर्म की बात नहीं है, जागरूकता, समय पर जांच और सही उपचार ही सबसे बड़ा समाधान है।
2: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर हम बात करें कि परिवार की इसमें क्या भूमिका होती है, तो हम देखते हैं कि मस्तिष्क ट्यूमर से पीड़ित व्यक्ति को परिवार के सहयोग की अधिक आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल,
2: परिवार रोगी को मानसिक सहारा देता है, समय पर दवाया दिलाना, सकारात्मक वातावरण बनाए रखना, साथ ही डॉक्टर की सलाह का पालन करवाना, और श्रोता साथियों वो जो रोगी व्यक्ति है उसको पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना।
1: बिल्कुल,
2: यही अगर हम बात करें कि मस्तिष्क ट्यूमर और जागरूकता का क्या संबंध है, तो हम देखते हैं कि कई लोग शुरुआती लक्षण को सामान्य सिर दर्द समझ कर नजरअंदाज कर देते हैं। यही लापरवाही बीमारी का गंभीर कारण बन जाती है। श्रोता साथियों, लगातार सर दर्द हो रहा है तो हमें हल्के में नहीं लेना है, बार बार दौरे पड़ने पर हमें तुरंत जांच करवानी है। साथ ही हमें दृष्टि और स्मृति में बदलाव को गंभीरता से लेना है, नियमित स्वास्थ्य की जांच भी हमें करवानी है।
1: जी हाँ मनीषा, इसी के साथ अगर बात करें मस्तिष्क ट्यूमर और मानसिक स्वास्थ्य की, तो हम देखते हैं अंजलि जी और मनीषा की ब्रेन ट्यूमर केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता,
0: बिल्कुल,
1: बल्कि मानसिक और भावनात्मक जीवन पर भी असर डालता है। हम देखते हैं कि इस दौरान रोगी में डर, चिंता, अवसाद और आत्मविश्वास की कमी देखी जाती है। ऐसे समय में अंजलि जी, परिवार का सहयोग रोगी के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है।
0: बिल्कुल,
1: श्रोता साथियों, हमें रोगी को सकारात्मक वातावरण, भावनात्मक समर्थन, नियमित चिकित्सा सलाह देनी चाहिए।
0: बिल्कुल कशिश, याद रखना होगा श्रोता साथियों को कि हर सिर दर्द मस्तिष्क ट्यूमर नहीं होता, हर ट्यूमर जीवन का अंत नहीं होता। डर और अफवाहों से दूर रहकर यदि हम सही जानकारी प्राप्त करें, समय पर चिकित्सीय सलाह लें और सकारात्मक सोच बनाए रखें, तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना ही स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि मस्तिष्क ट्यूमर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, लेकिन समय पर पहचान, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और मजबूत मनोबल के साथ इसका प्रभावी उपचार संभव है। हमें अपने शरीर द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लगातार सिर दर्द, दृष्टि में बदलाव, बार बार उल्टी, याददाश्त में कमी या शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। एक जागरूक समाज वही है श्रोता साथियों, जो बीमारी से नहीं बल्कि अज्ञानता से लड़ता है। आइए हम स्वयं जागरूक बने और अपने परिवार समुदाय को भी जागरूक करें। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को छिपाने के बजाय उनका समय पर समाधान खोजें। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज ही विकास की असली पहचान है।
2: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं, और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल, हाँ।
2: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल, बिल्कुल।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यही समाप्त होता है। अंत में साथियों आपसे यही कहना चाहेंगे कि मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है।
1: बिल्कुल,
0: इसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। ऐसे में किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज आप न करें, समय पर जांच कराएं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, क्योंकि जागरूकता ही सुरक्षा का पहला कदम है।
1: बिल्कुल,
0: इसी सकारात्मक संदेश के साथ दोस्तों अब हम कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: बिल्कुल,
0: तो दोस्तों आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
2: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ श्रोता साथियों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
2: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारशर को।
0: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके,
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई एन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया की निःशुल्क जाँच करी।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर एक नए प्रेरणादायक विषय के साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर आते हैं तो एक नए विषय को लेकर बातचीत करते हैं जो हमारे जीवन हमारे सपनों को एक नई उड़ान देता है। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ रहा है। साथियों, आज हम जिस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं वो विषय काफी महत्वपूर्ण है और काफी गंभीर भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकतर लोग इस समस्या से पीड़ित होते हैं। जी हाँ साथियों, बात कर रहे हैं निराशा से बाहर कैसे निकले। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो निराशा होती है वो हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं साथियों अपने लक्ष्य तक पहुंचने की, लेकिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से हम अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं बल्कि असफल हो जाते हैं और फिर हमारे पास निराशा ही बचती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगी कि जब हम निराश हो जाते हैं तब हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है, हमारा खुद पर विश्वास खो जाता है साथियों, जिसके कारण हम फिर से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी कि ये निराशा की समस्या क्या है और इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो साथियों पहले मनोरंजन कर लेते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों आज का विषय काफी महत्वपूर्ण है और गीत से पहले मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बता दी थी कि आज हम जिस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं वो है निराशा से बाहर हम कैसे निकलें। साथियों, जैसा कि गीत से पहले बताया था कि निराशा जो है वो धीरे धीरे इंसान के आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है, लेकिन दोस्तों जब ऐसा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और आगे अब कुछ अच्छा होगा भी नहीं। लेकिन दोस्तों ये जो चीज है वो सच नहीं है। आपको बताऊं तो जीवन में अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सुबह जरूर आती है। साथियों, निराशा स्थायी नहीं होती, बस हमें उससे बाहर निकलने का रास्ता समझना होता है कि हम उस निराशा से बाहर कैसे निकलें। तो साथियों, अब जानते हैं कि निराशा आखिर होती क्या है। दोस्तों, अगर आपको बताऊं तो निराशा वह स्थिति है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है किसी भी कार्य को करने की। उसे ऐसा लगता है कि इस कार्य में अगर उसको असफलता मिल रही है तो वो आगे दूसरे जो कार्य हैं वो भी नहीं कर पाएगा और वो निराश होकर बैठ जाता है। साथियों, उसे ऐसा लगने लगता है कि उसकी मेहनत बेकार है, उसके सपने अब कभी पूरे नहीं होंगे और उसकी जिंदगी में अब खुशी बची ही नहीं है। साथियों, ये जो भावना है वो धीरे धीरे हमारे मन पर भी असर डालती है। हम देखते हैं कि हम निराश होकर लोगों से दूर होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम गुस्सा करने लगते हैं, हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है और इससे हमारा आत्मविश्वास भी कमजोर पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए समझना ये जरूरी है कि निराशा कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो जीवन की एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य स्थिति है साथियों, जिससे हर इंसान को एक न एक दिन जरूर गुजरना पड़ता है। साथियों, बस फर्क इतना होता है इसमें कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निराश न होकर फिर से उठने का प्रयास करते हैं, और हमें उन्हीं लोगों जैसे बनना है। दोस्तों, हम देखते हैं कि निराशा आने के ढेर सारे कारण होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हम बार बार असफल हो जाते हैं। साथियों, जब मेहनत के बाद भी सफलता हमें कभी नहीं मिलती है तो इससे हमारा मन टूटने लगता है और हम खुद को ही कोसने लगते हैं और ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, या मैं अब उस कार्य को करूँगा तो मुझे सफलता नहीं मिलने वाली है, तो हम उस कार्य को छोड़ देते हैं। साथ ही कई बार दूसरों से तुलना करना भी एक कारण हो सकता है साथियों निराश होने का। जैसे कि आज के समय में हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करने लगे हैं। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं लोगों के लाइक्स को, फॉलोवर्स को, और फिर उनके जिंदगी से अपनी जिंदगी की कंपैरिजन करने लगते हैं, और फिर हम ये सोचते हैं कि यार इसके पास तो ये है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इसके पास ये है, इसके पास वो है, और मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशियों को देखकर हम खुद को क्यों कमजोर समझते हैं, ये तो गलत बात है। तुलना करने से दोस्तों हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण भी हमें असफलता मिलती है और हम निराश हो जाते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों से खुद की तुलना न करें, आप खुद बेस्ट हैं और आपका काम भी बेस्ट है। श्रोता साथियों, इसी के बाद अकेलापन भी एक कारण हो सकता है, जैसे कि जब इंसान अपनी बात किसी से साझा नहीं कर पाता श्रोता साथियों, तो उसके अंदर नकारात्मक विचार बढ़ने लगते हैं और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो अब अकेला है, उसको कुछ सुनने वाला नहीं है, उसकी भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं है, जिसके कारण भी वह निराश हो जाता है। साथ ही कई बार आने वाले समय का डर भी दोस्तों निराशा को आमंत्रित कर देता है। साथ ही लोगों की जो उम्मीदें होती हैं और जो ताने होते हैं वो भी दोस्तों हमें अंदर से कमजोर कर देते हैं, जिसके कारण भी हम अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रता से नहीं बढ़ पाते हैं और हमें निराशा ही प्राप्त होती है। इसलिए श्रोता साथियों, ये जो सभी कारण है निराशा आने के, उन सभी कारणों को हमें समझने की आवश्यकता है और इन कारणों से बचने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जब निराशा से हम बाहर निकलना चाहते ही हैं तो इन कारणों को समझकर ही हम निराशा से बाहर निकल सकते हैं। तो कार्यक्रम के माध्यम से जैसा कि बातें मेरी आपसे बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी होंगे ये बातें, आगे हम जानेंगे साथियों कि निराशा से बाहर हम कैसे निकले और निकलना जरूरी क्यों है, तो और भी बातें जरूर होंगी। लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं साथियों एक प्यारे से गीत के साथ में। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं वो कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर और वागर रेडियो 90.8 FM जैसा कि आप सभी सुन रहे हैं। विषय बातचीत का बहुत अच्छा चल रहा है कि निराशा से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो साथियों, आपको बताना चाहूंगी कि अगर निराशा लंबे समय तक बनी रहती है तो ये हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ सोच और रिश्तों पर भी असर डालती है। हम अपनी क्षमता पर विश्वास खोने लगते हैं और निराशा जो है वो हमें आगे बढ़ने से भी रोकती है साथियों, जबकि जीवन का नियम तो ये है कि हमेशा चलते रहिए। दोस्तों, अगर देखें तो पक्षी हर तूफान से डर जाए तो वह उड़

रखने से दुख बढ़ सकता है। ऐसे में आप अपने परिवार, मित्र या फिर किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी परेशानी को साझा कर सकते हैं। कई बार श्रोता साथियों, सिर्फ दिल की बात कह देने से भी मन हल्का हो जाता है। इसी के साथ छोटी छोटी खुशियों को भी आप महत्व दें। जैसे कि निराशा में इंसान दोस्तों खुशियों को देखना बंद कर देता है, लेकिन दोस्तों खुशियों से ही जीवन सुंदर बनता है। सुबह की ताजी हवा, बच्चों की मुस्कान, परिवार के साथ समय बिताना, प्रकृति की सुंदरता, दोस्तों ये सभी मन को एक नई ऊर्जा देते हैं। इसलिए हमें छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण, खुद की तुलना करना बंद कर दें, क्योंकि दोस्तों हर इंसान की जिंदगी अलग होती है। किसी का संघर्ष दिखाई नहीं देता तो किसी का संघर्ष बहुत ज्यादा दिखाई देता है। इसलिए खुद को दूसरों से कम समझना गलत है। अपनी मेहनत और अपनी यात्रा पर ध्यान दें। आप अपने लक्ष्य पर एकाग्रता से बढ़ते रहिए। साथ ही लोग क्या कहेंगे, इस परेशानी का भी हल है साथियों कि आप लोगों की बात ही ना सुने। क्योंकि दोस्तों आप अगर अच्छा करेंगे तो भी आपको लोग बोलेंगे, और आप अच्छा नहीं करेंगे तो भी लोग बोलेंगे। इसलिए हमेशा अपनी एकाग्र शक्ति को बढ़ाते रहिए। अपने लक्ष्य पर फोकस करिए कि आप क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं। अगर इस पर आप ध्यान देंगे तो आप क्या चाहते हैं ये आप भूल जाएंगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ ही आप रहें, क्योंकि दोस्तों जैसा वातावरण होता है वैसे ही हमारी सोच बनने लग जाती है। अगर हम हमेशा नकारात्मक बातें सुनेंगे तो मन और भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको हिम्मत दे, ना कि आपकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करें, जो आपकी प्रेरणा बने श्रोता साथियों। इसलिए सकारात्मक लोगों का साथ भी जरूरी है। इसी के साथ आप अपने शरीर का भी ध्यान रखें, क्योंकि कई बार हम तनाव में रहते हैं तो इसका हमारा जो प्रभाव है वो हमारे स्वास्थ्य पर सीधा सीधा देखने को मिलता है। इसलिए याद रखें दोस्तों कि स्वस्थ शरीर में ही मजबूत मन बनता है। इसलिए समय पर भोजन करें, पर्याप्त नींद लें, सुबह टहलें और थोड़ा व्यायाम करें। प्रकृति के बीच समय बिताना भी मन को शांति देगा दोस्तों, इसलिए आप ये भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि निराशा जीवन का अंत नहीं है, यह सिर्फ एक कठिन पड़ाव है जो हमें मजबूत बनना सिखाता है। हमें ऐसे में याद रखना है कि अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आएगी। अगर मन में उम्मीद जिंदा है दोस्तों तो हम हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए कभी हार मत मानिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए, खुद पर भरोसा रखिए साथियों, और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जिंदगी उन्हीं की होती है जो गिरकर फिर से उठना जानते हैं। जी हाँ साथियों, इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो दोस्तों विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी यहाँ पर एक प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। अंत में आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि दोस्तों, जीवन में कभी भी ऐसा समय आ सकता है जब आपको सब कुछ मुश्किल लगे, लेकिन आपको याद रखना है कि कोई भी परेशानी हमेशा नहीं रहती। निराशा हमें रोक सकती है साथियों, लेकिन अगर हमारे अंदर उम्मीद है तो फिर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है साथियों, इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, अपने सपनों को मत छोड़िए, कठिन समय में भी मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी, क्योंकि जो इंसान अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी ढूंढ लेता है वह जीवन में सचमुच उड़ान भरता है। दोस्तों, इसी सकारात्मक सोच के साथ अब दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति। उम्मीद करती हूँ साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, कार्यक्रम सपनों की उड़ान। कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए उड़ान भरे विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है विश्व महासागर दिवस और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस को लेकर।
0: जी हाँ,
1: आज कार्यक्रम में जानेंगे इन दोनों ही विषय के बारे में हम ढेर सारी जानकारी को, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज हम विश्व महासागर दिवस और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मना रहे हैं, तो इसी में सबसे पहले हम जानते हैं मनीषा, विश्व महासागर दिवस क्यों मनाया जाता है। श्रोता साथियों, हर वर्ष 8 जून यानी आज ही के दिन विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें महासागरों के महत्व को समझने और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक करने का अवसर प्रदान करता है। महासागर केवल पानी का विशाल भंडार नहीं है, बल्कि वे पृथ्वी के जीवन चक्र की आधारशिला है।
1: जी हाँ।
0: मानव जीवन, जलवायु, जीव विविधता, भोजन, प्यार और अर्थव्यवस्था सभी किसी न किसी रूप में महासागरों पर निर्भर है। हम देखते हैं मनीषा के पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: और इसका अधिकांश हिस्सा महासागरों में है। और दुनिया में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कई सारे महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ये सभी महासागर श्रोता साथियों आपस में जुड़े हुए हैं और मिलकर पृथ्वी के जो जल तंत्र है उसका निर्माण करते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लगभग 71% स्तर है वो महासागरों से ढकी हुई है। महासागर केवल विशाल जलराशि नहीं है साथियों, बल्कि वे पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के आधार है। मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पति और संपूर्ण पर्यावरण किसी न किसी रूप में महासागरों पर निर्भर हैं। महासागर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और जलवायु को संतुलित बनाए रखते हैं, भोजन उपलब्ध कराते हैं और विश्व अर्थव्यवस्था की गति है उसको भी संतुलित बनाकर रखते हैं। अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज जब बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक कचरे और अनियमित और अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों के कारण महासागरों का स्वास्थ्य है वो प्रभावित हो रहा है।
0: बिल्कुल।
1: जब विश्व महासागर दिवस का महत्व श्रोता साथियों हमें इस ओर आगे बढ़ाता है कि हमें इसका ध्यान रखना है, प्रदूषण कम करने की कोशिश करते हैं। श्रोता साथियों, यह दिन हमें याद दिलाता है कि महासागर स्वस्थ रहेंगे तो हमारी पृथ्वी है वो भी सुरक्षित रहेगी।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो विश्व महासागर दिवस का विचार वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान सामने आया था। बाद में वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को आधिकारिक रूप से विश्व महासागर दिवस के रूप में मान्यता इसे दी। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को महासागरों के महत्व से परिचित कराना और उसके संरक्षण के लिए प्रेरित करना है।
1: बिल्कुल।
0: अगर यही बात करें महासागरों के महत्व की, तो श्रोता साथियों, हम जो ऑक्सीजन सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं उसका लगभग आधा हिस्सा महासागरों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों और समुद्री पौधों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसका अर्थ है कि महासागर हमारे जीवन के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने की जंगल। महासागर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य की गर्मी को अवशोषित करके उसे अलग अलग क्षेत्रों में वितरित करते हैं, जिससे मौसम और जलवायु संतुलित रहती है। दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए मछली, अन्य समुद्री जीव भोजन का प्रमुख स्रोत है। लाखों लोगों की आजीविका भी समुद्री संसाधनों पर निर्भर करती है।
1: जी हाँ।
0: कहना चाहेंगे मनीषा कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कि समुद्री व्यापार, पर्यटन, मत्स्य पालन और बंदरगाहों के माध्यम से महासागर वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं।
1: जी हाँ।
0: महासागरों में लाखों प्रकार के जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं। इसमें से कई प्रजातियां अभी भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्यमन बन चुकी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि महासागरों का हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन श्रोता साथियों, वास्तव में पृथ्वी की लगभग आधी ऑक्सीजन महासागरों में सूक्ष्म समुद्री पौधे और शैवालों द्वारा उत्पन्न होती है। यदि महासागर न हो तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी कठिन है।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कि महासागर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को अवशोषित करके विभिन्न क्षेत्रों में वितरित करते हैं। यही कारण है श्रोता साथियों कि महासागर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी कम करता है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि दुनिया भर में करोड़ों लोग समुद्री भोजन पर निर्भर रहते हैं। मछली, चीले, केकड़े, अन्य समुद्री जीव है जो लाखों पोषक तत्व देते हैं। ये कई किसानों के लिए रोजगार का साधन भी होते हैं। हम देखते हैं कि समुद्री व्यापार, पर्यटन, मत्स्य उद्योग, बंदरगाह और समुद्री परिवहन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि महासागरों के सामने बहुत ज़्यादा खतरे बढ़ते जा रहे हैं। आज महासागर अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण सबसे ज़्यादा फैल रहा है। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि हर वर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में पहुंच जाता है। प्लास्टिक समुद्री जीवों के लिए घातक साबित हो रहा है। कई बार मछलियां, कछुए और पक्षी प्लास्टिक को भोजन समझकर निकल लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम देखते हैं मनीषा

0: कि समुद्र का तापमान जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इससे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो रहा है, प्रवाल भित्तियां नष्ट हो रही हैं और कई समुद्री प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है।
1: जी हाँ।
0: कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों कि अधिक लाभ जो है वो हमारे श्रोता साथियों को कमाने नहीं दे रहा है। अधिक लाभ कमाने की होड़ में जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती है, इससे हम देखते हैं कि समुद्री जीवों की कई प्रजातियां तेजी से कम हो रही है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रहे थे विश्व महासागर दिवस को लेकर, अंजलि जी हम देखते हैं कि विश्व भर में इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि समुद्र तट की सफाई अभियान चलाए जाते हैं, जागरूकता रैलियां निकाली जाती हैं, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: स्कूलों और कॉलेजों में हम देखते हैं कि प्रतियोगिताएं भी रखी जाती हैं, वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं, समुद्री जीव विविधता का प्रदर्शन किया जाता है। श्रोता साथियों इन गतिविधियों का उद्देश्य लोगों में महासागरों के महत्व के प्रति जोड़ना और संरक्षण के प्रति प्रेरित करना है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही बात करें कि यदि महासागर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पृथ्वी पर जीवन का संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। समुद्र का बढ़ता जल स्तर तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। मौसम कह सकते हैं कि मौसम की चरम सीमाएं घटने लगेंगी और इस तरीके से अलग अलग जो संकट है, विविधताएं जो है, वो हमें गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। श्रोता साथियों, महासागर संरक्षण केवल समुद्र किनारे रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये पूरी मानवता की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल,
1: हम क्या कर सकते हैं इसको लेकर बात करें तो श्रोता साथियों, हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना है। एकल उपयोग प्लास्टिक से बचें, कपड़े या जूट के बैग का प्रयोग करें, कचरा नदियों, तालाबों और खुले स्थानों पर न फेंकें क्योंकि यही कचरा समुद्र तक पहुंचता है। पानी का विवेकपूर्ण प्रयोग करें, जल संरक्षण अप्रत्यक्ष रूप से महासागरों की सुरक्षा में भी मदद करता है। अपने परिवार, बच्चों को, समुदाय को महासागरों के महत्व के बारे में हमें जानकारी देनी है। साथ ही पेड़ जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करते हैं जिससे महासागरों पर पड़ने वाला दबाव भी कम होता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अगर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार, मत्स्य उद्योग और तटीय पर्यटन इन समुद्री क्षेत्रों से गहराई से जुड़े हुए हैं। भारत ने समुद्री प्रदूषण रोकने, तटीय पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखने और समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लेकिन सरकार के प्रयास तभी सफल होंगे मनीषा, जब आम नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। कहना चाहेंगे कि महासागर पृथ्वी की धड़कन है, वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, भोजन देते हैं, जलवायु संतुलन को बनाए रखते हैं और अनगिनत जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। यदि हम महासागरों की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और महत्वपूर्ण हम समृद्ध भविष्य दे सकते हैं। विश्व महासागर दिवस केवल एक दिन मनाए जाने वाला दिवस नहीं है बल्कि एक संकल्प है, प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संकल्प, जल संसाधनों की रक्षा का संकल्प और पृथ्वी को बेहतर बनाने का संकल्प। इस विश्व महासागर दिवस पर हम सभी मिलकर ये प्रतिज्ञा लें कि प्लास्टिक प्रदूषण कम करेंगे, जल संरक्षण करेंगे और महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में अपना योगदान देंगे। याद रखिए श्रोता साथियों, स्वस्थ महासागर, स्वस्थ पृथ्वी और स्वस्थ भविष्य की कुंजी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि युवा महासागर संरक्षण अभियान में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी देते हैं। वे सोशल मीडिया, शिक्षा, नवाचार और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी जागरूकता फैला सकते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण क्लब बनाकर समुद्र संरक्षण संबंधित गतिविधियां भी आयोजित की जा सकती है। युवा पीढ़ी की छोटी छोटी पहले बड़े बदलाव ला सकती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, हमें महासागरों के संरक्षण के लिए कहीं कार्य करने चाहिए, जैसे कि समुद्री जीवों को अनेक प्रजातियों देखते हैं कि अंजलि जी वो विलुप्त हो रही हैं, तो उनके लिए भी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि विश्व महासागर दिवस हमें यह समझने का अवसर देता है कि महासागर पृथ्वी के जीवनदाता है, वे हमारी सांसों, भोजन, जलवायु, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। आज महासागर अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं अंजलि जी, जिसमें हम देखते हैं कि प्लास्टिक, जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक संसाधन का दोहन। श्रोता साथियों, समय की मांग की
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा कि विश्व महासागर दिवस हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हम पृथ्वी के उन विशाल जल स्रोतों के प्रति कितने जिम्मेदार हैं जिन पर जीवन का आधार टिका हुआ है। महासागर केवल भौगोलिक सीमाओं में बंधे जल क्षेत्र नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि वे प्रकृति की ऐसी अमूल्य धरोहर है जो मानव सभ्यता को निरंतर पोषित करती है।
0: बिल्कुल,
1: आज विज्ञान और तकनीक के युग में हमने विकास के अनेक आयाम छुए हैं, लेकिन यदि महासागरों का स्वास्थ्य बिगड़ता गया तो विकास की यात्रा भी संकट में पड़ सकती है श्रोता साथियों।
0: जी हाँ।
1: कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि महासागरों की सुरक्षा का अर्थ केवल समुद्री जीवों की रक्षा करना नहीं है, बल्कि ये मानव स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और पर्यावरण संतुलन को सुरक्षित रखने का प्रयास है। जब हम प्लास्टिक कम उपयोग करते हैं, जल स्तरों को प्रदूषित होने से बचाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करते हैं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तब हम अप्रत्यक्ष रूप से महासागरों की रक्षा करने में योगदान देते हैं।
0: जी हाँ,
1: आज आवश्यकता इस बात की है मनीषा कि महासागर संरक्षण को केवल सरकारी योजनाओं या अंतर्राष्ट्रीय अभियानों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाए। स्कूलों, गांवों, शहरों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय समुदायों को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। जागरूक नागरिक ही पर्यावरण की सबसे बड़ी ताकत होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आने वाली पीढ़ियां हमसे यह अपेक्षा करेंगी कि हमने उन्हें कैसी पृथ्वी सौंपी। यदि हम स्वस्थ जल, समृद्ध जैव विविधता और सुरक्षित पर्यावरण वाला भविष्य देना चाहते हैं, तो महासागरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना हमें होगा। विश्व महासागर दिवस हमें यही संदेश देता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बना कर चलना ही सच्ची प्रगति है। हम सभी यह संकल्प लें कि अपने दैनिक जीवन में ऐसे व्यवहार अपनाएं जो पर्यावरण और महासागरों के हित में हो, क्योंकि जब महासागर सुरक्षित रहेंगे तभी पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता, समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि महासागर हमें बहुत कुछ देते हैं, लेकिन बदले में वो हमसे बहुत कम अपेक्षा रखते हैं। यदि हम उन्हें प्रदूषण, लालच, लापरवाही से बचा सके साथियों, तो वे आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन और समृद्धि का स्रोत बन सकते हैं।
1: जी जी।
0: हम देखते हैं कि विश्व महासागर दिवस केवल एक दिवस नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। महासागरों की सुरक्षा में ही मानवता की सुरक्षा निहित है। हमें यह समझना होगा श्रोता साथियों कि समुद्र का स्वास्थ्य और मानव जीवन का स्वास्थ्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह महासागरों के संरक्षण के लिए अपना योगदान दे और एक स्वच्छ, सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण का निर्माण करें।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से विश्व महासागर दिवस को लेकर ढेर सारी बातें हो गई है। आगे हम जानेंगे मस्तिष्क ट्यूमर के बारे में, लेकिन अभी करते हैं मनोरंजन एक प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: फिर से रुक करते हैं। साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करते हैं कि किस तरीके से मस्तिष्क ट्यूमर जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। हम मनीषा, जैसा कि सभी जानते हैं कि मस्तिष्क का स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: अगर हमारा मस्तिष्क स्वस्थ है तो हम देखते हैं कि हम कई

0: समस्याओं से बच सकते हैं, क्योंकि मस्तिष्क जब तक सही नहीं रहता है तब तक हमें कई बीमारियां घर कर जाती हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे सोचने, समझने, याद रखने, बोलने, चलने फिरने और शरीर की लगभग सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जब मस्तिष्क की कोशिकाएं असामान्य रूप से श्रोता साथियों बढ़ने लगती है तो एक गांठ के रूप में यह गांठ बन जाती है, तो उसे मस्तिष्क ट्यूमर कहा जाता है। श्रोता साथियों, यह स्थिति किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में प्रभावित कर सकती है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि मस्तिष्क ट्यूमर मस्तिष्क के अंदर बनने वाली असामान्य कोशिकाओं की गांठ होती है। यह छोटी या बड़ी हो सकती है। श्रोता साथियों, कुछ ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ते हैं जबकि कुछ ट्यूमर तेजी से फैल सकते हैं। ट्यूमर मस्तिष्क के किसी भी भाग में विकसित हो सकते हैं साथियों, इसीलिए किसी भी भाग को प्रभावित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से मस्तिष्क ट्यूमर को लेकर बात कर रहे हैं और जैसा कि आपने भी बताया कि मस्तिष्क यानी कि हमारा जो दिमाग है वो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमारे सोचने, समझने, याद रखने, बोलने, चलने फिरने, शरीर के अलग अलग अंगों को नियंत्रित करने का ये काम करता है।
1: जी हाँ।
0: ऐसे में यदि मस्तिष्क में किसी प्रकार की असामान्य गांठ या कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि हो जाए तो उसे मस्तिष्क ट्यूमर कहा जाता है। कई बार लोग मस्तिष्क ट्यूमर का नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं, लेकिन समय पर पहचान और सही इलाज से इसे कई मरीज स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसलिए इस विषय पर आज कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि हमारे शरीर की कोशिकाएं एक निश्चित नियम के अनुसार बढ़ती हैं और नष्ट होती रहती हैं, लेकिन जब मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं तो एक गांठ का रूप ले लेती है, तब उसे मस्तिष्क ट्यूमर कहा जाता है। मस्तिष्क ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, सौम्य ट्यूमर और घातक ट्यूमर। अगर सौम्य ट्यूमर की बात करें तो ये कैंसर युक्त नहीं होता और धीरे धीरे बढ़ते हैं और कई मामलों में इसका सफल उपचार संभव होता है। घातक ट्यूमर की बात करें तो ये कैंसर युक्त होता है और तेजी से फैल सकते हैं। इनका उपचार अपेक्षाकृत जटिल होता है।
1: बिल्कुल
0: आज भी वैज्ञानिक इसकी सभी कारणों को पूरी तरीके से श्रोता साथियों समझ नहीं पाए हैं, लेकिन संभावित कुछ कारण ऐसे माने जाते हैं जिससे मस्तिष्क ट्यूमर होता है, जैसे कि आनुवंशिक कारण, अत्यधिक रेडियंस के संपर्क में आना, कुछ दुर्बल आनुवंशिक रोग, बढ़ती उम्र, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और कुछ पर्यावरणीय जोखिम।
1: जी हाँ।
0: हालांकि श्रोता साथियों, अधिकांश मामलों में इसका स्पष्ट कारण पता ही नहीं चल पाता।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि मस्तिष्क ट्यूमर के लक्षण उसके आकार और स्थान पर निर्भर करते हैं। कई बार शुरुआती लक्षण सामान्य बीमारी जैसे लगते हैं साथियों, इसीलिए उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि अगर हमें मस्तिष्क ट्यूमर जैसी कोई समस्या है तो हमारा लगातार हमें सर दर्द होता है। सुबह के समय सर दर्द अधिक होता है, बार बार उल्टी आना, चक्कर आना, देखने में परेशानी, सुनने की क्षमता प्रभावित होना, याददाश्त कमजोर होना, बोलने में कठिनाई होना, साथ ही शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी महसूस होना। श्रोता साथियों, यदि आपको इसमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आप डॉक्टर से तुरंत सलाह लें और अपनी जांच करवाएं।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि जैसा कि आपने सामान्य लक्षण बताए हैं और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की बात कही है, यही हम देखते हैं कि मस्तिष्क ट्यूमर केवल वयस्कों में ही नहीं होता है बल्कि बच्चों को भी प्रभावित करता है।
1: जी हाँ।
0: बच्चों में दिखाई देने वाले कुछ संकेत जैसे कि सिर का असामान्य रूप से बड़ा होना, बार बार उल्टी होना, पढ़ाई में ध्यान न लगना, चलने में कठिनाई, संतुलन बिगड़ना और आंखों की हरकतों में बदलाव। यदि ऐसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से हमें संपर्क करना है।
1: बिल्कुल।
0: मस्तिष्क शरीर की सभी महत्वपूर्ण कार्यों को श्रोता साथियों नियंत्रित करता है। यदि ट्यूमर का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर व्यापक रूप से पड़ सकता है तो हम देखते हैं कि इसका शारीरिक प्रभाव जैसे कि चलने फिरने में परेशानी, शरीर के अंगों में कमजोरी, दृष्टि और श्रवणता की क्षमता जो है वो प्रभावित होती है। चिंता और तनाव, अवसाद, आत्मविश्वास में कमी, काम करने की क्षमता में कमी, परिवार पर आर्थिक बोझ, सामाजिक जीवन प्रभावित होता है।
1: बिल्कुल।
0: इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्यूमर के ये प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। सही समय पर जांच के माध्यम से इसका उपचार किया जा सकता है। श्रोता साथियों, हर मामले में बचाव संभव नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां जो है वो जोखिम कम कर सकती है। जैसे कि स्वस्थ जीवन शैली हमें अपनाना है, संतुलित भोजन करना है, नियमित व्यायाम हमें करना है, धूम्रपान और नशे से दूर रहना है, अनावश्यक रेडियंस से बचना है, नियमित स्वास्थ्य जांच करानी है और किसी भी असामान्य लक्षण को हमें नजरअंदाज नहीं करना है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि किसी भी बीमारी को समय पर पहचानना बहुत जरूरी है, लेकिन श्रोता साथियों, मस्तिष्क ट्यूमर हमें और भी जरूरी है पहचानना, क्योंकि हम देखते हैं कि शुरुआती अवस्था में पहचान होने पर उपचार की संभावना है वो अंजलि जी बढ़ जाती है और रोगी जीवन बेहतर अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि कई लोग सिर दर्द या चक्कर जैसी समस्याओं को सामान्य समझकर महीनों तक नजरअंदाज कर देते हैं। इससे हम देखते हैं कि उनकी बीमारी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है और उनका शरीर है वो भी कमजोर होने लगता है।
0: जी हाँ मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में आज हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रहे थे मस्तिष्क ट्यूमर को लेकर, अंजलि जी हम देखते हैं कि मस्तिष्क ट्यूमर केवल मरीज को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करती है। उपचार के दौरान शारीरिक मानसिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना भी आ सकता है। श्रोता साथियों मरीज को कई बार डर चिंता और निराशा महसूस हो सकती है। ऐसे समय में परिवार का सहयोग और सकारात्मक वातावरण उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। परिवार के सदस्यों को धैर्य रखना चाहिए और मरीज की भावनाओं को समझना चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई लोग मस्तिष्क ट्यूमर के लक्षणों से अनजान हैं। समय पर जांच और इलाज के बारे में जानकारी पहुंचाना बहुत आवश्यक है। स्कूलों, पंचायत, स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक संगठनों को मिलकर स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलानी चाहिए ताकि लोग बीमारी को शुरुआती अवस्था में ही पहचान सके।
0: बिल्कुल,
1: मस्तिष्क ट्यूमर एक गंभीर लेकिन समझदारी, जागरूकता और आधुनिक चिकित्सा की मदद से काफी हद तक नियंत्रित की जाने वाली बीमारी है। डर और भ्रांतियों की जगह सही जानकारी अपनाना समय की आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति मनीषा लगातार सिरदर्द, दृष्टि संबंधित समस्या, व्यवहार में बदलाव और अन्य असामान्य लक्षण महसूस करे तो उन्हें सामान्य थकान या तनाव समझकर टालना नहीं चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना, नियमित जांच करवाना, संतुलित जीवन शैली अपनाना और समय पर विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह लेना ही इस बीमारी से मुकाबला करने का सबसे प्रभावी तरीका है।
0: बिल्कुल,
1: याद रखिए श्रोता साथियों, बीमारी से लड़ाई केवल अस्पताल में नहीं जीती जाती बल्कि जागरूकता, परिवार के सहयोग, सकारात्मक सोच और समय पर उपचार से जीती जाती है।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि अधिक से अधिक समुदाय के लोगों को हमें इस

0: रोकना कोई निश्चित तरीका नहीं है, फिर भी स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। संतुलित भोजन रखे, पर्याप्त पानी ले, नियमित व्यायाम करे, तनाव को कम करे, नशे से दूर रहे और नियमित स्वास्थ्य जांच करवाए। श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि मस्तिष्क ट्यूमर से जुड़े जागरूकता बढ़ाने के लिए हमें समाज भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोगों को इस बीमारी के बारे में सही जानकारी मिलनी चाहिए ताकि वे अफवाहों और गलत अवधारणाओं से बच सके। स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, सामुदायिक संगठनों और मीडिया को मिलकर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। श्रोता साथियों, इससे अधिक जानकारी मिल सके और समय पर जांच भी की जा सके।
1: जी हाँ मनीषा, हम देखते हैं कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित जानकारी का अभाव कई बार बीमारी को और गंभीर बना देता है।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में सामुदायिक रेडियो, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, शिक्षक और सामाजिक संगठन लोगों तक सही जानकारी पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जब समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी तब लोग डर और भ्रम से बाहर निकलकर वैज्ञानिक सोच के साथ निर्णय ले पाएंगे।
0: जी हाँ।
1: याद रखना चाहिए श्रोता साथियों कि किसी भी बीमारी के सामने आशा और सकारात्मक सबसे बड़ी ताकत होती है। मरीज का आत्मविश्वास, परिवार का साथ, समाज का सहयोग और चिकित्सक विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलकर कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना जो है वो आसान बना देते हैं।
0: जी हाँ।
1: एक जागरूक व्यक्ति न केवल स्वयं को सुरक्षित रखता है मनीषा, बल्कि अपने परिवार और पूरे समाज को भी बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में प्रेरित करता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए आइए श्रोता साथियों, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे, सही जानकारी को अपनाए और एक ऐसे समाज के निर्माण में योगदान दे जहां हर व्यक्ति समय पर उपचार और स्वस्थ जीवन का अधिकार प्राप्त कर सके। इन्हीं बातों के साथ मनीषा, अब कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से विदा लेने का समय आ चुका है। विदा जरूर लेंगे लेकिन मन कर रहा है कार्यक्रम में श्रोता साथियों को एक और प्यारे से गीत के साथ हम मनोरंजन करवाएं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में है।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे इस फ़ोन नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके ज़रिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश को।
1: नमस्कार।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे के बीच आता है। तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। हमारे इस नंबर पर हमारा फ़ोन नंबर ही 9460051234। तो दोस्तों अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अम्बाला हरियाणा से। फिल्म का नाम है फांसी। गीत के बोल हैं जब आती होगी याद मेरी। इस गीत की फरमाइश करता है रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश रावल, प्रियंका मुन्नत, गुरशब्द, गुरकिरत शब्द राहुल। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से, नीतीश कुमार देवगाना, दुर्गा प्रसाद, पराग जी, अनुजा जी और ईशान जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं गंजुडवारा से उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, शमशुल कमर राही जी। इस गीत के अनुरोध करता है पंडपुर शहर से जाकिर मुलानी, समैया मुलानी, सुभान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, चाचा चाची। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं गंजडवारा से शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजदान खान, फिजाद खान, अनु खान, उस्माद अंसारी, कलीम जी अंसारी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं कस्बा अग्रवाल, मंडी बागपत से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सालिक अली खान जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जब आती होगी याद मेरी। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छत्तीसगढ़ मदनपुर से। फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं, गीत के बोल ही तुमसे मिलकर न जाने क्यों। इस गीत की फरमाइश करते हैं श्रवण कुमार शाहू, योगेश शाहू, राहुल जी शाहू। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पंडितपुर शहर से सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं कोखा बलाई से उत्तम सिंह जंगिल, मोरज जंगिल, अनिल कुमार जंगिल, अजीत कुमार जंगिल, आरुषि जंगिल, नंदिनी जी जंगिल। सुकरी कला से जुड़ना चाह रहे हैं अमित जंगिल, सुकुन जंगिल, आरुषि जंगिल, ओशिका जंगिल, आदित्य और अंजलि जी जंगिल। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सताना एमपी से जुड़ रही उमंग मलिक, आकांक्षा जी मलिक, माही जी मलिक। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़ी, करुणा मीना, अश्विन विपुल जी कांबड़ी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही तुमसे मिलकर न जाने क्यों। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है तेरी नाम, गीत के बोल हैं ओडनी ओडली। इस गीत की फरमाइश करता है चन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, संजोगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमन नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। बुलडाणा महाराष्ट्र से समर्थन दादा जी, बाबा भगवान पाटिल, श्रीमती लक्ष्मी पाटिल, कुमारी सानिका जी पाटिल। नांदुरा से जुड़ना चाह रहे हैं शिवांगी उगले और राहुल उगले जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं रतलाम एमपी से जगदीश धाड़के, श्रीमती रंजू भाई, युवराज सिंह, शिवांगी जी। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, मोनू मानस राज। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आरुषि श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बीबी आरुषि श्रीवास। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ओडनी ओडली हैं। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजडवारा से। फिल्म का नाम है बेताब, गीत के बोल हैं जब हम जवां होंगे। इस गीत को आवाज दी है लता जी और शबीर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फीसाद खान, अनु खान, उस्माद अंसारी, कलीम जी अंसारी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा देवी शर्मा, सार्थक जी शर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं जाखोत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। इस गीत के अनुरोध करता है जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं दादरीगेट भवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुनहाल जी मेहरा। गाजियाबाद से जुड़ना चाह रहे हैं शिषपाल जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी खुराना, किरण खुराना, लव्या खुराना, आरव खुराना। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही जब हम जवां होंगे। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों लता जी और शब्बीर कुमार जी की आवाज़ में हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत की बोल थी जब हम जवां होंगे। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है नेपानगर मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है हीरा पन्ना। गीत के बोल हैं, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। इस गीत को आवाज़ दी है लता जी और किशोर कुमार जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, शुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं सलार पहलगाम कश्मीर से, पीरजादा निराजुद्दीन मजमुद्दीन केसरुद्दीन जी। मस्तानपुरा से जुड़ना चाह रहे हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं मध्य प्रदेश से, डॉक्टर तिलोक चंदे वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, मास्टर समरराज, आर्यन वर्मा, बीबी आरोही वर्मा, ऐशिका वर्मा, श्वेता और अंजलि जी वर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं आवरपुर से शेख हबीब, छोटू भाई शेख, साजन बेगम, फिजा शेख, फारूक शेख, वसीम शेख, अफसाना, अश्मीरा जी, अरफान शेख, जनेश शेख, फरहान शेख, अब्दुल्लोहेवाला, शाहिदा जी शेख। मलियाना सरधाना मेरठ से जुड़ रही हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। इस गीत को आवाज़ दी है लता जी और किशोर कुमार जी ने।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है आज और कल, गीत के बोल हैं ये वांदिया ये फिजाएं। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। अमरावती से सिद्धार्थ गुड़ानी, अर्चना ताई गुड़ानी, हीरामन शिंडे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा जी गुड़ानी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं धनोरी बुलडाणा से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन जी पाटिल। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं वासिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, परिधि सुरेशी, मायराजी सुरेशी। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम शाहू, जय कुमार शाहू, जय किशन शाहू, श्रीमती कुमारी जी शाहू, मती इंद्रा माया देवी शाहू। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं डाबकी रोड अकोला से शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। इस गीत के अनुरोध करता है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से साहिद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नोरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेक जी अंसारी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ शाहू, पंकज शाहू, तिरुपति जी शाहू। इस गीत के अनुरोध करता है रामपुर से अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं कासगढ़ से मोहम्मद जाहिद अली, सेफी, आबाद खान, सोहान खान, अलीबा जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे भागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी जी। दिल्ली से जुड़ रहे रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। गीत के बोल हैं ये वादियाँ ये फिजाएं। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

दोस्तों अभी हमने मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत की बोल थी ये वादियाँ ये फिजाएँ बुला रही हैं तुम्हें। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है खामोशी। गीत के बोल हैं हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। इस गीत की फरमाइश करता है बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, मुरली प्रसाद वर्मा, मुरली अमित वर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से। हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार जी, ईशान जी चीपा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं नरवेल महाराष्ट्र से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर से जुड़ना चाह रहे हैं नारायण इगले, सोनाली तावड़ी, राजकुमार खर्चे और आशीष महेकर जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं राजनंदा गांव से छत्तीसगढ़ से बबलू शाहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बीबी, आराध्या जी शाहू। इस गीत के अनुरोध करता है सहारनपुर से समीद मशरूम, साइना हसन, आक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सदाम जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, निट्टू लक्ष्मी मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ना चाह रहे हैं पीओ सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू सिक्का, भाविका जी सिक्का। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कंजरूडवारा से। फिल्म का नाम है सिलसिला, गीत की बोल है देखा एक ख्वाब तो। इस गीत को आवाज़ दी है लता जी और किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासिन अंसारी, शमशुल कमर राही जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बिहार कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतनी मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधानजी खुराना। पंडितपुर सिटी से जुड़ना चाह रहे हैं प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा खोड़के जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से संतोष भाड़की, सुकन्या, सुनन्या और सरिता जी भाड़की। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश जी मुणत। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र जी डांगी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है देखा एक ख्वाब तो। फिल्म का नाम है सिलसिला। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश प्रातः 11 से 1 बजे तक चलता है। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आप हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9460051234। तो साथियों, आप इस नंबर के जरिए आप अपनी फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागर रेडियो 90.8 FM पर। तो जैसा कि 12 बज चुकी है, कार्यक्रम की फरमाइश आई है और फरमाइशों का सिलसिला चल ही रहा था। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों हमराज गीत के बोल है तुम अगर साथ देने का वादा करो। इस गीत के गायक है महेंद्र कपूर। सुना चाह रहे इस गीत को सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर और पुनः वड़तकर। और भी दोस्त हैं जो इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं। अकोट से हैं विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए के, संजीव डाबेराव। अनुरोध करता है पटेल नगर मालोद से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया और गुड्डू। फरमाइश करता है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान। पसंद किया है दोस्तों इस गीत को उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं तुम अगर साथ देने का वादा करो।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है साजन, गीत के बोल हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। सुनना चाह रहे हैं इस गीत को ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही महराजा, ये है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। फरमाइश करता है इस गीत की अलीगंज जिला एटा उत्तर प्रदेश से हैं दीपक शाक्य, ज्योति शाक्य और सक्षम शाक्य। अनुरोध किया इस गीत के लिए मित्रनगर बीरशहर से हैं विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैभव शिंदे। हिल स्टेशन खंडाला से हैं आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, गीत की बोल है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। आवाज़ दी इस गीत को अनुराधा पोडवाल जी ने और फिल्म का नाम है साजन। आप बने रहें कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपने साथ ही जागृति भट्ट के साथ में।

0: बिछड़न। फिल्म का नाम है सन ऑफ सरदार। सुनना चाह रहे इस गीत को कुम्भार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग कुम्भार अनुरोध करता है। दोस्तों इस गीत के पत्रोड़ से विजय अम्बाडकर, सुनीता अम्बाडकर, अक्षय अम्बाडकर, राधिका अम्बाडकर, ऋषिकेश अम्बाडकर सदर बाजार कुरावली से है, अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। अजित कसाना, माया देवी ऋतिक और आदित्य कसाना लतावली जिला मुरादाबाद से हैं। फरमाइश करता है दोस्तों इस गीत के नेहरू चौक पैटर्न से डॉक्टर सुरेश जादव, अनिता जादव, आरती पूजा, प्रसाद जादव, सोनल जादव, बीबी सिया जादव, जालना शहर से सोमनाथ जादव, गीता जादव, ओम जादव, सुभाष जादव, एक चंदन जादव, एकनाथ जादव, संगीता जादव, जय जिनेन्द्र, श्रुता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघी, महेश संघी, प्रगेश संघी, प्रदेश संघी और पूरा संघी परिवार, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, ये हैं बन्ने बुजुर्ग पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल है तू बिछड़न।
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में

दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, गीत के बोल थे तू बिछड़न, फिल्म का नाम था सनोप सरदा। यही अगली फरमाइश हमारे पास आई है, गीत के बोल है, ये तो कश्मीर है इसकी फिजा का क्या कहना। सुनना चाह रहे इस गीत को भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर काजल बड़वाल, लखवीर बड़वाल, रानू कृष्णा, श्रीमती छिंदू, प्रवीण शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल, प्यारे बेटे चटकू मटकू। ये है दीवान रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर, जिला हनुमानगढ़ से हैं। इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नासिर नासिर, शाजिद शाहिद, गोविंदपुर अहमदनगर से जुनित मुजावर, सबिया मुजावर, मिखाइल मुजावर, जैनब मुजावर। सुना चाह रहे इस गीत को दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी, मगर रोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हयांश कुमार चंदन। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, गीत के बोल हैं, ये तो कश्मीर है इसकी फिजा का क्या कहना।

साथियों, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। गीत के बोल हैं चांद छुपा बादल में, फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम। आवाज दे इस गीत को उदित नारायण साहब और अलका याग्निक जी ने। सुनना चाह रहे हैं इस गीत को अस्तोपुर जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवान परवीन अब्दुल आजाद, नलगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। इसी गीत के साथ श्रोता साथियों जुड़ रहे हैं नई बस्ती गंजटुडवारा से मोहम्मद यासिन हाशमी, नाजा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौशिफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाली खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवंशी खेड़ा और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। श्रोताओं, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजित कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकृत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल, जैसे कि फरमाइशों का सिलसिला चल रहा है। श्रोता साथियों इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सूर्य रमेश साहू, डुमराव बिहार से हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, डॉक्टर दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना देशमुख। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं चांद छुपा बादल में।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है कसूर, गीत की बोल है मोहब्बत हो ना जाए। आवाज़ दी इस गीत को कुमार सानू और अलका याग्निक जी ने। सुनना चाह रहे इस गीत को बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान, डुक्कू। इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवानकन, दुर्गा प्रसाद देवानकन, पराग टेलर, तनुजा देवानकन, ईशांत देवानकन। फरमाइश करता है दोस्तों इस गीत के, गंस्ट द्वारा गणेशपुर से फिरासत हुसैन, अलकमर जहां, शिफा सिमरन, मोहम्मद अल्फीज, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। ग्राम पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा, पूनम कगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमिता हुजा। और भी दोस्त हैं श्रोता साथियों जो इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, गीत के बोल है मोहब्बत हो ना जाए।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है सावन भादो। गीत की बोल है, मेरा मन घबराए तुझे नींद ना आए। सुनना चाह रहे इस गीत को उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा से श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू सिंह, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुषि, शौर्य, दिनेश और भी दोस्त हैं जो इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं। छनुला श्रीवास, अनिता, पुष्पा श्रीवास, अंजू, योगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी, यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ से अनुरोध करता है इस गीत के। गुणवत श्रीवास जी, श्रीमती करुणा श्रीवास जी, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आयुषी श्रीवास, ये हैं तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। सुनना चाह रहे हैं दोस्तों इस गीत को एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकिता कांगड़ा, पूर्णा जंक्शन, मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, किशोर रिधान खुराना और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनास, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव, ये हैं गंसडवारा उत्तर प्रदेश से। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल है, मेरा मन घबराए, फिल्म का नाम है सावन भादो।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है रिफ्यूजी। गीत के बोल हैं, पंछी नदियां पवन के झोंके। सुना जा रहा है इस गीत को धनुरी तिलीवारा से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। इरशाद अहमद अंसारी, कामरान निर्शाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, अजरत अबसुम मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से है। रायपुर अनिल जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरिन अंसारी, आफिया परवीन जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ। जयराज प्लोट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट और भी दोस्त हैं। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू पसंद किया है इस गीत को। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून। किशोर नगर अमरावती से है शीला देवी शिंदे, हीरामन शिंदे, सिद्धार्थ गुड़ाने। कोयते बस्ती पुनावले से है अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, शाइशा सोनवने। आठ श्री रामपुर से है डी अशोक कुंभार, अविका जीविका, सानू कुंभार, अर्चना कुंभार। सप्तरंग श्रोता परिवार

श्रोता साथियों इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार, नीतीश कुमार, तनुजा देवानगन, ईशान देवानगन, लखनलाल देवानगन, सावित्रीबाई देवानगन, ये है पलारी छत्तीसगढ़ से। सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल ज्योति, बीबी वैदही जोशी, बेरी हंसिका जोशी, कुमारी अंकित जोशी, ये हैं भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से। अनूपपुर मध्य प्रदेश से हैं जयंतवंती केवट जी, खंडवा मध्य प्रदेश से हैं अब्दुल कफ्फार डावर जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, यही हमारे आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत है।

तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारे आज की सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। आज दिनांक 7 मई 2026 वार गुरुवार का दिन है। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज, यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज। इसे लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 5:30 पर। इसके बाद हम रुख करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेतीबाड़ी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि पारेशर और इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी अंजलि पारेशर। अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मनीषा पटेल यानी कि मेरे साथ में, और मेरे साथ होंगे हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे ठीक 8 बजे। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोता साथियों, इन्हीं नगमों के बाद हम रुख करेंगे गजलों की ओर। सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा था की दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, अपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात में शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह।
5: होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा।
6: होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं के आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बात होने वाली है कि नींद की प्राकृतिक लय को बहने दो। कहने का तात्पर्य ये श्रोता साथियों कि जो व्यक्ति रात की शांति में सुकून से सोना सीख जाता है, वही दिन के संघर्ष में मजबूती से खड़ा रह पाता है।
0: जी हाँ,
1: यानी कि आज का समय भाग दौड़, तनाव, मोबाइल और कृत्रिम चमक से भरा हुआ है। हर कोई आगे बढ़ने की दौड़ में इतना व्यस्त हो गया कशिश कि उसने अपने शरीर और मन की सबसे बड़ी जरूरत नींद को ही नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है।
0: बिल्कुल,
1: लोग देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, काम करते हैं, वेब सीरीज देखते हैं और फिर सुबह थकान, चिड़चिड़ापन और तनाव के साथ उठते हैं। धीरे धीरे ये आदत शरीर की प्राकृतिक लय को बिगाड़ देती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम युवा साथियों से ढेर सारी बातें जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शुरुआत में जैसा कि मनोरंजन करना कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना एक गीत यहाँ पर सुनवाए साथियों को पहले।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और विषय के बारे में भी हम आपको बता ही चुके हैं कि बात कर रहे हैं कि नींद की प्राकृतिक लय को हमें बहने देना है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले हमारे युवा साथियों को ये बताया था कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सबसे ज्यादा जिस चीज की अनदेखी कर रहे हैं वह है हमारी नींद। दोस्तों, मोबाइल की चमकती स्क्रीन, देर रात तक चलने वाली चैटिंग, सोशल मीडिया, वेब सीरीज और गेमिंग और साथ ही लगातार काम या पढ़ाई का दबाव, इन सब ने हमारी नींद को कई हद तक प्रभावित किया है।
1: जी हाँ,
0: या फिर कहें कि नींद की प्राकृतिक लय को ही बिगाड़ दिया है। जागृति जी, हम देखते हैं कि बहुत से युवाओं को ये लगता है कि कम सोना मेहनती होने की निशानी है।
1: जी हाँ,
0: लेकिन सच तो ये है कि जो व्यक्ति अपनी नींद को खो देता है वह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा, एकाग्रता और साथ ही खुशी और स्वास्थ्य को भी खोने लगता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि

0: व्यक्ति ने इंसान के शरीर को एक निश्चित लय के साथ बनाया है। सूरज उगने पर जागना और रात होने पर आराम करना हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने इस लय को तोड़ दिया है। यही कारण है कि आज युवाओं में अनिद्रा, तनाव, मानसिक थकान और कमजोरी तेजी से बढ़ रही है। कहा गया है कि प्रकृति की चाल अपनाएंगे, गहरी नींद का सुख पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: कहने का तात्पर्य ये श्रोता साथियों कि बहुत से लोग सोचते हैं कि नींद केवल थकान मिटाने के लिए होती है, जबकि सच्चाई ये है कि नींद हमारे शरीर और दिमाग को दोबारा ऊर्जा देने का सबसे बड़ा माध्यम भी है।
1: बिल्कुल,
0: जब हम सोते हैं तब शरीर खुद को ठीक करता है, दिमाग नई ऊर्जा प्राप्त करता है और मन शांत होता है।
1: जी हाँ,
0: यदि किसी व्यक्ति की नींद पूरी नहीं होती तो उसका असर उसके व्यवहार, सोचने की क्षमता और स्वास्थ्य पर साफ साफ दिखाई देने लगता है। वो जल्दी गुस्सा करता है, निर्णय लेने में कमजोर होता है और छोटी छोटी बातों से परेशान रहने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: आज के युवा रात भर जागकर मोबाइल चलाते हैं और इसे आधुनिकता समझते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि ये आदत धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य को कमजोर कर रही है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ युवा साथियों, जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर केवल शांत नहीं होता बल्कि भीतर कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहा होता है, जैसे कि जो दिमाग है वो दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है। जागृति जी,
0: जी हाँ,
1: शरीर की कोशिकाएं खुद को ठीक करती है, थकान दूर होती है, हार्मोन संतुलित होते हैं, याददाश्त हमारी मजबूत होती है और मानसिक तनाव कम होता है। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि नींद शरीर की प्राकृतिक दवा है। अगर किसी युवा की नींद पूरी नहीं हो रही है तो उसका सीधा असर, जैसा कि आपने बताया, कि हमारे व्यवहार, हमारी निर्णय क्षमता और भावनाओं पर दिखाई देता है। जागृति जी, दोस्तों, प्रकृति ने हर चीज एक निश्चित लय में तैयार की है। जैसे कि सूरज जो है वो समय पर उगता है, पक्षी सुबह चहकाते हैं, पेड़ पौधे दिन और रात के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं और मौसम अपने समय पर बदलता रहता है। जागृति जी,
0: जी हाँ,
1: इसी तरह श्रोता साथियों, हमारे शरीर की भी एक जैविक घड़ी होती है जिसे वैज्ञानिक भाषा में हम बॉडी क्लॉक कहते हैं। जागृति जी, ये जो घड़ी है वो ये तय करती है कि कब शरीर को जागना है और कब विश्राम की अवस्था में जाना है।
0: बिल्कुल कशिश, और यही अगर प्राकृतिक लय के अर्थ के बारे में हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो शरीर का वो आंतरिक समय चक्र जो दिन और रात के अनुसार काम करता है, जब सूरज निकलता है तो शरीर सक्रिय होना चाहता है और जब अंधेरा होता है तो शरीर आराम मांगता है, इसे ही शरीर की जैविक घड़ी कहते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया था, पुराने समय में लोग जल्दी सोते थे और जल्दी उठते थे, उनका जीवन प्रकृति के अनुसार चलता था श्रोताओं, इसीलिए वे शारीरिक रूप से अधिक मजबूत और मानसिक रूप से शांत रहते थे। आज हम देखते हैं कशिश की कृत्रिम रोशनी और डिजिटल दुनिया ने इंसान को देर रात में भी सक्रिय बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: मोबाइल और लैपटॉप की तेज रोशनी दिमाग को ये संकेत देती है कि अभी दिन है, इसीलिए शरीर नींद के लिए तैयार नहीं हो पाता।
1: जी जी,
0: धीरे धीरे ये आदत प्राकृतिक लय को बिगाड़ देती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, रात को रात ही रहने दो, नींद की लय को बहने दो, यानी कि कहने का ये तात्पर्य है श्रोता साथियों कि रात को रात ही रहने दो, यानी कि कई बार हम रात को देर रात तक काम करते रहते हैं
1: जी,
0: और हम ये सोचते हैं कि थोड़ी देर और कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वो हमारे शरीर को थकाता है, इसीलिए अगर रात को रात रहने देंगे और अच्छे से नींद निकालेंगे तो सवेरे हमारी जितनी भी थकान है वो दूर हो जाएगी। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही कशिश कि नींद की प्राकृतिक लय को हम किस तरह से बहने दें, ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से कि नींद की प्राकृतिक लय को हम किस तरह से बहने दें। हमने प्राकृतिक लय क्या होती है उसके बारे में भी जाना था। इसी के साथ हम जानते हैं कि युवाओं में बिगड़ती नींद की समस्या क्या है।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि कशिश, आज का युवा सबसे अधिक नींद की समस्या से जूझ रहा है। पढ़ाई का दबाव है, करियर की चिंता है, सोशल मीडिया की लत और देर रात तक ऑनलाइन रहने की आदत, ये सारी चीजें उसे पूरी तरह से बदल रही है। हम देखते हैं कि कई युवा रात के 2-2 बजे तक जागते रहते हैं। सुबह जल्दी उठने के कारण उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और इसका असर उनके स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। आंखों के नीचे काले घेरे, सिर दर्द, कमजोरी और मानसिक तनाव आम हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: सबसे बड़ी बात ये श्रोताओं कि लोग इसे बीमारी नहीं समझते, वे इसे सामान्य आदत मान लेते हैं, जबकि यही आदत आगे चलकर गंभीर समस्याओं का कारण बनती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि आज सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी बातें दिखाई और बताई जाती है कि सफल लोग कम सोते हैं, रात भर जागो और मेहनत करो। साथ ही नींद जो है वो कमजोर लोगों के लिए है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन दोस्तों ये सब जो चीजें हैं वो अफवाहें हैं, सच्चाई नहीं है। हम देखते हैं कि सफल वही बनता है जिसका शरीर और दिमाग संतुलित हो। थका हुआ दिमाग लंबे समय तक जागृति जी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। ऐसे में आराम और मेहनत दोनों का संतुलन ही वास्तविक सफलता की पहचान होती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि जब हमारा मन शांत होता है तब हमें नींद भी अच्छी आती है, और जब नींद अच्छी आती है तो मन शांत रहता है। साथियों,
0: जी हाँ,
1: यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई युवा लगातार चिंता, तुलना, असफलता या फिर भविष्य की उलझनों में डूबे रहेंगे तो नींद अपने आप ही प्रभावित होने लगेगी। दोस्तों, इसलिए केवल शरीर को ही नहीं मन को भी आराम देना काफी जरूरी है जागृति जी।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग छोटी छोटी बातों पर इतने परेशान हो जाते हैं और इसका कारण उनकी खराब नींद होती है।
1: बिल्कुल,
0: दिमाग को आराम न मिलने से सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है और व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाता है। श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे कि मोबाइल आज जीवन का हिस्सा जरूर बन चुका है, लेकिन यही मोबाइल नींद का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन गया है।
1: बिल्कुल,
0: लोग सोने से पहले घंटों सोशल मीडिया चलाते रहते हैं कशिश, एक वीडियो के बावजूद दूसरा वीडियो और फिर पूरी रात बीत जाती है।
1: जी जी,
0: यह आदत न केवल समय खराब कर रही है दोस्तों, बल्कि दिमाग को भी लगातार सक्रिय बनाए रख रही है।
1: बिल्कुल,
0: और परिणाम स्वरूप व्यक्ति को जल्दी नींद नहीं आती है। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, जबकि सच ये है श्रोता साथियों कि वे अपने दिमाग को आराम करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो इन सब बातों के लिए श्रोता साथियों हमें समय पर सोने की आदत डालनी होगी, सोने से पहले मोबाइल से दूरी बनानी होगी, हल्का भोजन करना होगा, शांत वातावरण रखना होगा और सकारात्मक सोच को अपनाना होगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि तनाव और सकारात्मक विचार भी नींद को प्रभावित करते हैं, इसलिए सोने से पहले मन को शांत रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ हम देखते हैं कि नींद का हमारे युवा साथियों के सपनों से भी गहरा रिश्ता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि हर युवा अपने जीवन में बड़े सपने देखते हैं जागृति जी। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई खिलाड़ी तो कोई सफल व्यवसायी।
0: जी हाँ,
1: लेकिन दोस्तों सपनों को पूरा करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, स्वस्थ शरीर और शांत मन का होना भी बहुत जरूरी है। कह सकते हैं कि ये जो दोनों चीजें हैं वो हमें अच्छी नींद से ही मिलेगी।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, नींद कोई समय की बर्बादी नहीं है बल्कि अगले दिन की तैयारी है। तो ऐसे में युवा साथियों आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी सचमुच जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने शरीर की आवाज को सुनना सीखिए।
0: जी हाँ,
1: जब शरीर थक जाए तो उसे आराम दीजिए, जब आंखें नींद मांगे तो उन्हें मोबाइल की रोशनी में मत उलझाइए, जब मन आपका बेचैन हो तो थोड़ी देर प्रकृति के पास बैठ जाइए।
0: बिल्कुल,
1: याद रखिए श्रोता साथियों, प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी हर काम सही समय पर करती है। कई बार जागृति जी घर का वातावरण भी युवाओं की नींद को प्रभावित करता है, जैसे कि देर रात टीवी, अनियमित दिनचर्या, अत्यधिक दबाव, लगातार तुलना। दोस्तों इन सभी से हमारा जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ सकता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में परिवार को भी चाहिए जागृति जी कि वे हमारे युवा साथियों को संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते रहें।
0: बिल्कुल कशिश, जैसे कि आपने प्रकृति के बारे में बताया था तो श्रोता साथियों प्रकृति से जुड़ना बहुत जरूरी है। प्रकृति इंसान की सबसे बड़ी शिक्षक है। सुबह की ताजी हवा, पक्षियों की आवाज और सूरज की रोशनी शरीर और मन को संतुलित करती है।
1: बिल्कुल,
0: जो लोग प्रकृति के करीब रहते हैं कशिश, उनकी नींद भी बेहतर होती है। आज हम देखते हैं कि बच्चों और युवाओं की बिगड़ती दिनचर्या केवल उनकी गलती नहीं है, परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि वे स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दें। माता पिता को बच्चों के सामने खुद भी सही आदतों का उदाहरण बनना चाहिए। यदि घर में हर व्यक्ति देर रात तक मोबाइल चलाएगा तो वो बच्चे भी वही सीखेंगे।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि नींद कोई कमजोरी नहीं है बल्कि जीवन की शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी नींद का सम्मान करता है वही अपने स्वास्थ्य, मन और भविष्य को सुरक्षित रखता है।
1: बिल्कुल।
0: हमें समझना होगा कि शरीर मशीन नहीं है, उसे भी आराम, शांति और संतुलन की जरूरत होती है। यदि हम लगातार अपनी प्राकृतिक लय को बिगाड़ते रहेंगे तो उसका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हम फिर से प्रकृति की ओर लौटें, समय पर सोएं, समय पर जागें और अपने शरीर की आवाज को सुनें। जब हम नींद की प्राकृतिक लय को बहने देंगे तभी हमारा जीवन भी संतुलित और खुशहाल बनेगा। तो श्रोता साथियों, सफलता वही टिकती है जिसके पीछे स्वस्थ शरीर और शांत मन होता है, और शांत मन की शुरुआत अच्छी नींद से होती है।
1: बिल्कुल।
0: तो आपसे कहना चाहेंगे कि नींद को मत ठुकराओ क्योंकि यही जीवन का असली आधार है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है।
0: बिल्कुल।
1: और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो युवा साथियों कार्यक्रम से विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहेंगे यहाँ पर एक प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: हाँ।
0: आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो युवा साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम युवाओं की आवाज में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि हमें हमारे बच्चों को उनके जीवन में सिखाना जरूरी है कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं और जो काम करने वाले होते हैं उनका हमें सम्मान करना है, क्योंकि हमारे समाज में काम को बड़े और छोटे में बांटने की एक पुरानी सोच रही है।
0: जी जी।
1: लेकिन बदलते समय के साथ कशिश यह समझना और सीखना जरूरी हो गया है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, चाहे वह सफाई कर्मचारी का कार्य हो, खेत में मजदूरी करने का कार्य हो, किसान का हो या किसी दुकान का सामान बेचने वाला। हर व्यक्ति अपने कार्य से समाज की नींव को मजबूत करता है। बच्चों को शुरू से ही यह शिक्षा देना बहुत जरूरी है कि सभी प्रकार के काम महत्वपूर्ण हैं और सभी काम करने वालों का सम्मान करना भी हमें चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोताओं को गीत सुनवाएं पहले।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहेंगे हम कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि हर काम छोटा या बड़ा नहीं होता और सभी प्रकार के काम और करने वालों का हमें सम्मान करना चाहिए। जैसा कि गीत से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें रही श्रोता साथियों, अब यही अगर आपको बताएं तो कार्य का महत्व समझ और सोच पर निर्भर करता है। अंजलि जी, हर कार्य समाज के लिए किसी न किसी रूप में योगदान देता है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि डॉक्टर जीवन बचाता है तो सफाई कर्मी बीमारी को दूर रखने में मदद करता है। शिक्षक का कार्य ज्ञान देता है श्रोता साथियों, तो बड़े ही लोहार मिस्त्री जैसे लोग हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं।
1: जी हाँ
0: साथियों, अगर कोई भी कार्य न किया जाए तो समाज की व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए हमें बच्चों को ये समझाना होगा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ ही हमें बच्चों को ये भी सिखाना है अंजलि जी कि हमें किसी व्यक्ति का मूल्य उसके कपड़ों, पढ़ाई या फिर पेशे से नहीं बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी से आंकना चाहिए। साथियों, एक ईमानदार सफाई कर्मी, एक मेहनती दूध वाला और एक कड़ी मेहनत करने वाला किसान, ये सब समाज के असली हीरो होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: बच्चों को यह भावना दिल में बसानी चाहिए कि हर मेहनत कश इंसान सम्मान के योग्य होता है।
1: बिल्कुल कशिश, यही बात करें श्रोता साथियों तो शुरुआत घर से होनी चाहिए। यानी कि कशिश, जब बच्चा घर में काम करने वाले लोगों को भैया, दीदी या उनके नाम से आदर पूर्वक बुलाता है तो वही आदत स्कूल और समाज में भी आती है।
0: जी जी।
1: उन्हें बताया जाए कि स्कूल में झाड़ू लगाने वाली आया या चौकीदार अंकल भी स्कूल की व्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। हम बच्चों को महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, बाबा आमिटे जैसे महान लोगों की कहानियां सुनाकर समझा सकते हैं कि उन्होंने स्वयं अपने हाथों से छोटे छोटे कार्य किए और कभी भी उसे नीचा नहीं समझा। इससे बच्चों के मन में काम करने वालों के प्रति सम्मान पैदा होता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, इसी के आगे अगर बात करें श्रोता साथियों तो फिल्मों और किताबों का इसमें आप सहारा ले सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: यानी कि आपको अपने बच्चों को ऐसे फिल्में दिखाना चाहिए जो मेहनत करने वालों का आदर करना सिखाए, जैसे कि बागबान हो गया, तारे जमी पर फिल्म हो गई या फिर कोई सीक्रेट सुपरस्टार। साथियों, बच्चों की सोच को सकारात्मक दिशा में ये फिल्में जो हैं वो ले जा सकती है, इसलिए ये फिल्में आप अपने बच्चों को जरूर दिखाएं।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही नैतिक कहानियों की किताबें आप अपने बच्चे को खरीद कर दे सकते हैं। बाल साहित्य और चित्र पुस्तकों के माध्यम से भी ये शिक्षा दी जा सकती है अंजलि जी।
1: जी हाँ।
0: इसे के आगे अगर बात करें श्रोता साथियों तो माता पिता होने के नाते हमें खुद ही उदाहरण बनना होगा। अंजलि जी, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: अगर ऐसे में हमारे माता पिता किसी रिक्शे वाले, सफाई कर्मी या फिर हेल्पर से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं या कह सकते हैं कि उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो बच्चे भी यही सीखेंगे।
1: बिल्कुल।
0: इसके विपरीत दोस्तों, आपको उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।
1: जी
0: इसके विपरीत, अगर आपके बच्चे आपको उनके प्रति व्यवहार अच्छा करते हुए देखेंगे, उन्हें धन्यवाद कहते हुए दिखाई देंगे या फिर आप उन्हें सम्मान दे रहे हैं तो बच्चे भी यही सीखेंगे।
1: बिल्कुल।
0: माता पिता को स्वयं भी काम करने वालों के प्रति अंजलि जी सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। इसी के साथ ही विद्यालय में भी ऐसे पाठ हो श्रोता साथियों जो बच्चों को श्रम का सम्मान करना सिखाए।
1: जी हाँ।
0: बाल सभाएं, नाट्य प्रस्तुतियां और रोल प्ले के माध्यम से भी ये सिखाया जा सकता है कि हर कार्य की अपनी एक गरिमा होती है।
1: इसी के साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि बच्चों को अपने छोटे छोटे कार्य स्वयं करने के लिए प्रेरित करें, जैसे अपना बेग खुद रखना, अपने जूते पॉलिश करना, खाना खाने के बाद प्लेट हटाना, इससे वे श्रम का महत्व समझेंगे और दूसरे के कार्यों को छोटा नहीं समझेंगे। श्रोता साथियों, जब कोई बच्चा पूछे कि मम्मी वो अंकल कूड़ा क्यों उठाते हैं तो उन्हें डांटना नहीं चाहिए बल्कि प्यार से समझाना चाहिए कि वो समाज को साफ करने का जिम्मेदारी भरा काम कर रहे हैं और उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए। इस तरीके से कशिश कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोता साथियों से चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले कशिश, हम ढेर सारी बातों को जान ही पा रहे हैं कि किस तरीके से हमें बच्चों को ये बताना है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है और हमें हर काम करने वाले व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, समाज में हर व्यक्ति और उसका कार्य महत्वपूर्ण है। अगर हम बच्चों को ये शिक्षा देंगे कि किसी का कार्य कभी छोटा नहीं होता और हर काम करने वाले का सम्मान हमें करना चाहिए, तो वे बड़े होकर एक समझदार, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे।
1: बिल्कुल,
0: इस सकारात्मक सोच की शुरुआत हमें आज ही से करनी होगी।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो दोस्तों, सम्मान देना इंसानियत की पहली पहचान है, ये भी आप अपने बच्चों को बताएं।
0: बिल्कुल
1: अंजलि जी, जब बच्चे किसी काम करने वाले को नाम से बुलाते हैं, नमस्ते करते हैं या फिर मुस्कुराते हैं, तो उसमें इंसानियत झलकती है।
0: बिल्कुल,
1: ये छोटी बातें श्रोता साथियों दूसरों को बहुत अच्छा महसूस कराती है और बच्चे के अंदर भी करुणा और संवेदना बढ़ाती है।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ ही बच्चों को आप ये सिखाएं कि कोई भी काम करने वाला नीचा नहीं होता। जाति, कपड़े या फिर काम के आधार पर किसी को कमतर आंकना बहुत गलत बात है।
0: जी हाँ,
1: इस बात को या फिर इस सोच को अगर बचपन से ही रोका जाए श्रोता साथियों, तो समाज में समानता और भाईचारा ऐसे ही बढ़ता रहेगा। इसी के साथ ही स्वावलंबन और आत्म सम्मान को भी बढ़ावा दे, यानी कि जब बच्चे अंजलि जी खुद छोटे छोटे काम करना सीख जाते हैं, जैसे कि जूते पहनना, पानी भरना या फिर स्कूल का बैग तैयार करना, तो उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान आता है।
0: बिल्कुल,
1: इससे वे दूसरों की मेहनत को भी समझने लगते हैं श्रोता साथियों।
0: इसी के साथ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि बच्चों को हमें सिखाना है कि कोई इंसान क्या काम करता है, उससे ज्यादा जरूरी है कि वह कितना ईमानदारी से कार्य करता है। चाहे वो फल बेचने वाला हो या इंजीनियर हो, अगर वो अपने काम को बेहतर और ईमानदारी से कर रहा है तो प्रशंसा का पात्र है। घर में काम करने वाले जैसे कि मैं, ड्राइवर, माली को नौकर नहीं बल्कि सहयोगी कहें। बच्चों के मन में ये बात बैठानी चाहिए कि ये लोग हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, इसलिए उनका विशेष आदर होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को थैंक यू या धन्यवाद कहना सिखाना है कशिश, एक छोटी सी पर बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण आदत है। ये आदत उनके व्यक्तित्व को विनम्र बनाती है और दूसरों को सम्मानित भी महसूस कराती है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, स्कूलों और समाज में मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस जैसे अवसरों पर बच्चों को प्रेरक भाषण, चित्रकला या नाटक के जरिए सिखाना चाहिए कशिश हमें कि श्रमिकों का हमारे जीवन में क्या योगदान है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों से हफ्ते में एक दिन घर के कुछ काम जरूर करवाएं, जैसे झाड़ू लगाना, पौधों को पानी देना, जूते साफ करना। यह उन्हें श्रम का महत्व और श्रमिकों की मेहनत समझाने का व्यवहारिक तरीका हो सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें श्रोता साथियों, तो बच्चे जब स्कूल में खेल के मैदान में किसी सफाई कर्मी या फिर गार्ड के बच्चे को अपने साथ खेलने या फिर बैठने से मना करते हैं, तो वही भेदभाव की भावना जन्म लेती है।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में अभिभावकों और शिक्षकों को ऐसे मौकों पर तुरंत उन्हें समानता का पाठ पढ़ाना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ दोस्तों बताएं तो जब बच्चे घर के काम और हर काम करने वाले का सम्मान करना सीख जाएंगे, तो वे बड़े होकर एक ऐसा समाज बनाते हैं जहाँ बराबरी, भाईचारा और करुणा हो, और यही हमारी असली पूंजी है अंजलि जी।
0: जी हाँ,
1: तो इस तरीके से श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि बचपन ही वही समय होता है जब इंसान की सोच, भावनाएं और संस्कार आकार लेती है अंजलि जी। यदि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि हर काम की अपनी गरिमा होती है, हर काम करने वाला सम्मान के योग्य है, तो हम एक ऐसे समाज की नींव रखेंगे दोस्तों, जहां किसी को उसके काम के आधार पर छोटा या फिर बड़ा नहीं समझा जाएगा।
0: जी बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि साफ सफाई करने वाला हो या खाना बनाने वाला, किसान हो या ड्राइवर, सभी समाज की गाड़ी को चलाने वाले पहिए हैं। अगर इनमें से एक भी ना हो दोस्तों, तो जीवन हम देखेंगे कि हमारा रुक सा जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए जरूरी है कि बच्चों के मन में सम्मान, संवेदना और समानता की भावना बचपन से ही विकसित की जाए। अंजलि जी, हम सबका यह कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को ये समझाएं कि काम कोई भी छोटा नहीं होता, मेहनत करने वाले हाथ कभी भी कमजोर नहीं होते। यही सोच हमारे बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाएगी साथियों, और हमारे समाज को और भी अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और मानवीय बनाएगी।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम सच्चा बचपन में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें रही हैं। आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
1: जी बिल्कुल,
0: क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन हमारा यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
1: नमस्कार।

0: भाई न बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरे रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु गणमान स्वागत करा हूँ अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो बहन बोनो आज हमारे कार्यक्रम में अब तक की बातचीत नो विषय है अजोला हूँ कहवा है ने आ हरते अपने पशु बल्ले पूरक आहार ने तौर माते काम आवे है। तो अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी अब तक की घना कनी बात थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू कर इन्हें पहले आपने हमारा विदा गीत ने मोरे कर अपनी बात है। तो बहन बोनो आप हमरते रहो आपू रेडियो अपनी बात है वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: भाई बोनो गीत तो ऐसे पूर्व ना गीत बात एक वक्त फिर आप सब नु घने मन स्वागत करो हाँ हमारे आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी में जिम की बहन बोनो गीत के पहले आपने विषय बताड़ियो तू कि आज आप बातचीत करवा वाला हाँ अजला घास ने नहीं ने तो अणा विषय माते बातचीत करवा बल्ले आज आप कार्यक्रम तक जुड़ी रहे मनीष जी सर तो सब तक पहले आप हमरी लाना नहीं बात मोरे कर आपकी बात सर नमस्कार
1: नमस्कार अंजलि जी
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में
1: आपका और वागड़ रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद
0: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से जुड़ रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है अजोला घास को लेकर तो सर सबसे पहले आप कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों को यही बताइए कि अजोला घास आखिरकार है क्या
1: जी बिल्कुल तो मैं हमारे किसान साथियों को बताना चाहता हूँ कि अजोला जो है वो पशुधन स्वास्थ्य और पोषण में

0: महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि अभी गर्मी के दिन हैं और हमारे पशुधन को पोषण के रूप में हरा चारा आहार में बहुत ही कम या नहीं के बराबर मिल रहा है, जिससे उनका पोषण कम होता है और पोषण कम मिलने से उनकी उत्पादकता और जीवन निर्वाह में कुछ समस्याएं आ सकती है। ऐसी परिस्थितियों में जब हरा चारा उनके आहार में उचित मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे अजोला हमारे लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होता है।
1: जी।
0: अजोला जल की सतह पर मुक्त रूप से तैरने वाला एक काई या फर्न है। ये छोटे छोटे समूह में गुच्छे की तरह पानी के ऊपर तैरता रहता है।
1: बिल्कुल।
0: ये काफी हद तक गर्मी को सहन करने वाला होता है और अजोला जल में बड़ी तेज गति से बढ़ता भी है।
1: बिल्कुल सर।
0: अजोला की जो उत्पादन लागत होती है वो बहुत ही कम, यानी कि सिर्फ एक बार हम 200 रुपए खर्च कर ले तो उसके बाद हम लगातार अजोला का उत्पादन अपने यहाँ ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि अजोला क्या है और किस तरीके से इसको उगाने में हमारे किसान भाई बहनों को लागत भी कम लगानी पड़ती है, तो सर यहीं अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इसकी गुणवत्ता क्या रहती है और किस तरीके से इसकी विधि है जो हमारे किसान भाई बहनों को ध्यान होनी चाहिए ताकि वो भी अपने खेत में या अपने घर पर अजोला का उत्पादन कर सके।
0: अजोला की यदि गुणवत्ता की बात करें पहले हम, तो अजोला बहुत ही सस्ता, सुपाच्य,
1: जी
0: पौष्टिक और पूरक पशु आहार के रूप में जाना जाता है।
1: बिल्कुल।
0: इसे खिलाने से पशुधन के दूध में वसा और वसा रहित आहार खाने वाले पशुओं की तुलना में सामान्य से अधिक वसा पाई जाती है। ये दूध में वसा के प्रतिशत को भी बढ़ाता है। कई बार देखा गया है कि अजोला पशुधन में बांझपन के निवारण में भी उपयोगी साबित हुआ है, क्योंकि इसको खिलाने से कई प्रकार के जो पोषक तत्व जिनकी पशुधन के शरीर में कमी हो जाती है वो उनकी पूर्ति करता है।
1: जी हाँ।
0: इसे खिलाने से पशुधन का शारीरिक विकास भी बहुत अच्छा होता है। मुख्य रूप से ऐसे पशुधन के लिए अजोला का उपयोग बड़े स्तर पर किया जाता है जिन्हें मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। अजोला में प्रोटीन, आवश्यक अमीनो एसिड, विटामिन, विटामिन ए, B12 और बीटा कैरोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं और साथ ही खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, इस तरह के कई खनिज लवण भी इसमें उचित मात्रा में पाए जाते हैं।
1: जी हाँ।
0: इसमें शुष्क मात्रा के आधार पे 40-60% प्रोटीन होता है, 10-15% खनिज और 7-10% अमीनो अम्ल, जीव सक्रिय पदार्थ और पॉलीमर्स आदि होते हैं।
1: जी हाँ।
0: इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही आसानी से पशुधन के शरीर में पचकर उन्हें जल्दी से जल्दी पोषक उपलब्ध कराता है।
1: जी हाँ।
0: तो ये हमारे बकरियों, गाय, भैंस, मुर्गी, इन सभी के लिए जो है एक आदर्श पोषक
1: आहार है।
0: दुधारू पशुओं पर किए गए कुछ प्रयोगों से ये पता भी चला है कि यदि दैनिक आहार में अजोला प्रतिदिन उन्हें दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में भी 10-15% की वृद्धि देखी गई है।
1: बिल्कुल।
0: अब हम अजोला उत्पादन की विधि की यदि बात करें कि किस तरह से अजोला का उत्पादन हम अपने घर या खेत में कर सकते हैं और जो हमारे पशुधन के लिए काम आएगा, तो इसके लिए हमें एक गड्ढा बनाना होता है जो 1 फीट गहरा होगा, 10 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा, ये गड्ढे का आकार होगा। इसमें हम किसी तरह का पॉलीथीन या कोई अन्य चीज या इसी तरह से एक पक्का गड्ढा भी बनाया जा सकता है जो स्थायी रूप से हमेशा जो है हमारे काम आता रहेगा।
1: बिल्कुल।
0: यदि हमारे किसान भाई सक्षम है तो, अन्यथा वो ऐसी किसी चीज का प्रयोग करें जिससे गड्ढे में जो पानी भरा जाना है वो जमीन में ना उतरे।
1: जी बिल्कुल।
0: इसके बाद हम वहां पे उसको बिछा के उसको पानी से पूरा भर देते हैं और इसमें 6 6 किलोग्राम मिट्टी और 6 किलोग्राम ताजा गोबर मिला के इस पानी के अंदर उस घोल को डाल देना चाहिए
1: जी।
0: इसके बाद 1 से 1.5 किलो अजोला की जो काई है या फर्न है उसको उसके ऊपर डालना है। सही स्थिति रहने पे ये बहुत तेज गति से बढ़ता है और 3 से 5 दिन में ही दुगना हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: अब यदि हम अजोला उत्पादन करना चाहते हैं तो इसके प्रबंधन की विधियां भी जानना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि कई बार ये होता है कि अजोला उत्पादन शुरू होने के कुछ समय के बाद उसका उत्पादन या तो धीमा हो जाता है या मिलना बंद हो जाता है
1: जी।
0: जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को लगता है कि कहां कौन सी समस्या है जिसकी वजह से अब इसका उत्पादन हमको नहीं मिल पा रहा है। तो पहला है कि अजोला की क्यारी में हर 3 महीने में मिट्टी और पानी को बदल देना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: इसकी अच्छी वृद्धि के लिए हम इसमें हर 15 दिन में 1 से 2 किलो गाय का ताजा गोबर घोल के डालते रहना चाहिए। हर महीने 10 किलोग्राम मिट्टी क्यारी से निकाल के इसकी जगह ताजी मिट्टी डाल देना चाहिए। अजोला क्यारी से निकाली गई मिट्टी को हम हमारी पोषणवाड़ी या खेत में खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं
1: जी।
0: इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होती है जो हमारे पौधों के लिए बहुत जरूरी है
1: जी। जी।
0: निकाले गए अजोला को साफ पानी से धोकर दाने बाटे या उनको खिलाए जाने वाले आहार के साथ मिला के देना चाहिए। इसको धोते समय ये जरूर ध्यान रखें कि इसको 2 से 3 बार धो लें अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें हल्की सी गोबर की गंध होती है तो कई बार इसके कारण पशुधन उसको नहीं खाते। तो इसको 2 या 3 बार धोने के बाद कुछ मिनट के लिए छांव में फैलाकर रख दें जिससे इसमें से गंध निकल जाए।
1: बिल्कुल।
0: इसमें जिस आकार का गड्ढा हमने बनाया है या अजोला की क्यारी बनाई है इसमें हर दिन हम 1.5 से 2 किलो अजोला रोज निकाल सकते हैं और 24 घंटे में इतना ही अजोला वापिस उसमें उत्पादित हो जाता है।
1: बिल्कुल सही।
0: गर्मियों में जब अजोला का उत्पादन बढ़ जाए तो इसे साफ करके छांव में सुखा कर रख सकते हैं और जब हमें जरूरत हो तब ये सूखा अजोला भी हम अपने पशुधन के चारे बाटे या दाने में मिला के उनको दे सकते हैं, तो ये भी उतना ही उपयोगी होता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से अजोला को बनाने की विधि है और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका हमारे श्रोता साथियों को ध्यान में रखने की जरूरत है। यहीं सर, इसके क्या लाभ होते हैं हमारे पशुओं पर, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: तो हमें पशुधन को अजोला खिलाने से जो लाभ मिलते हैं तो पहला तो है ये सस्ता पौष्टिक पूरक पशु आहार है।
1: बिल्कुल।
0: अजोला खाने वाले पशु सामान्य आहार लेने वाले पशुधन की अपेक्षा ज्यादा स्वस्थ होते हैं। अजोला पशुधन के बांझपन में भी उपयोगी माना गया है।
1: बिल्कुल।
0: दुधारू पशुओं को में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए हम अजोला घास का उपयोग करते हैं। 1 किलो अजोला की गुणवत्ता 1 किलो खली के बराबर होती है।
1: बिल्कुल।
0: जो हम हमारे पशुधन को देते हैं। इसी के साथ यदि देखें तो पशुओं के पेशाब में खून की समस्या जो कि फास्फोरस की कमी के कारण पशुधन में होती है, ऐसे पशुओं को भी अजोला खिलाएं तो यह समस्या दूर होती है।
1: बिल्कुल।
0: अजोला पशुओं के लिए एक जैविक और आदर्श पूरक आहार है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अजोला जो है वो पोषण का बहुत ही सस्ता और बहुमूल्य हमारे पास समाधान है।
1: बिल्कुल।
0: जिसमें हमें किसी तरह की कोई विशेष मेहनत की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक बार अजोला इकाई की स्थापना यदि कर दी जाए और उसके प्रबंधन के बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए तो हम लगातार हमारे पशुधन के लिए अजोला का उत्पादन अपने घर में ही छोटी सी जगह में कर सकते हैं और हमारे पशुधन के उत्पादन और स्वास्थ्य में जो है इसके लाभों को देख सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आज कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे श्रोता साथियों को ये बताया है कि अजोला क्या है, किस तरीके से इसका उत्पादन हमारे श्रोता साथियों को करना है, साथ ही पशुओं के लिए किस तरीके से पूरक पोषण आहार के तौर पर ये कार्य करता है। तो सर, बातें ढेर सारी हो गई हैं। आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी, आपका और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: બહેન મુનુ, જેમ કે હવે આપણે વાસમાં મનીષજી સર જોડે તક હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા થી કે ઘણા કાની વાતે બતાડી હે કે હરતે આપણે આપણે ઘેરેસ અજોલા ઘાસ લગાડી શક ને આ હરતે આપણે પશુ બલ્લે પૂરક પોષા આહાર ની રૂપ મે કામ આવે હે। તો આશા કર હા ભાઈન બોનુ કે આપને આ હંગરી વાતે ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું। તો સૂટા તો પડા, પણ સાથે પહેલા હમરી લાઈક ઓર કિતને મોરે પડા સૂટા।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
3: नाना अंजलि बुन हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
3: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
4: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा।

बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारे बातें रहने वाली है कि असली स्वतंत्रता साहसी होने में छिपी हुई है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि हम देखते हैं कि स्वतंत्रता केवल बाहरी बंधनों से मुक्त होने का नाम नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता तो तब प्राप्त होती है जब मनुष्य अपने भीतर के भय, संकोच, कमजोरी और नकारात्मक सोच से मुक्त हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: बहुत से लोग ये समझते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना, लेकिन श्रोता साथियों, वास्तविकता ये है कि जब तक व्यक्ति डर के बंधनों में जकड़ा रहता है, तब तक वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम सच्चा स्वराज में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए क्यों ना हम हमारे दोस्तों को कार्यक्रम का पहला गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है, असली स्वतंत्रता साहसी होने में छिपी हुई है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि अंजलि, साहस वो शक्ति है जो मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। साहसी व्यक्ति ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए कहा जाता है कि असली स्वतंत्रता साहसी होने में छिपी है।
1: बिल्कुल शाकृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि जब भी स्वतंत्रता की बात होती है तो हमारे मन में सबसे पहले राजनीतिक आजादी का विचार आता है। लेकिन श्रोता साथियों, क्या केवल बाहरी आजादी ही स्वतंत्रता है? क्या हम सचमुच स्वतंत्र हैं? यदि हम अपने डर, संकोच, गलत परंपराओं और समाज के दबाव के आगे झुक जाते हैं तो ये हमारी स्वतंत्रता नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: वास्तव में स्वतंत्रता का सबसे गहरा अर्थ है अपने विवेक के अनुसार सही निर्णय लेने का साहस। जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा होने का साहस रखता है जागृति जी, जो अन्याय का विरोध करने का साहस रखता है, जो अपनी कमजोरियों का सामना करने का साहस रखता है, वही वास्तव में स्वतंत्र कहलाता है।
0: बिल्कुल,
1: स्वतंत्रता और साहस, श्रोता साथियों, एक ही सिक्के के दो पहलू है। जहाँ साहस नहीं होता है वहाँ स्वतंत्रता भी अधूरी रह जाती है।
0: जी हाँ।
1: कई बार जागृति जी, हम अपने जीवन में सही बातें जानते हुए भी उसे कह नहीं पाते। हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे।
0: जी हाँ।
1: समाज क्या सोचेगा, परिवार कैसे प्रतिक्रिया देगा, और यही डर हमारी स्वतंत्रता को सीमित कर देता है।
0: बिल्कुल अंजलि, साहस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ये केवल युद्ध के मैदान में दिखाई देने वाली वीरता नहीं है, बल्कि सही बात पर अड़िग रहने की क्षमता भी है।
1: बिल्कुल,
0: साहसी व्यक्ति कठिनाइयों से भागता नहीं श्रोताओं, बल्कि उनका सामना करता है। वो जानता है कि चुनौतियां जीवन का हिस्सा है और उनसे डर कर नहीं बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: यदि दुनिया के महान लोगों ने साहस न दिखाया होता तो समाज में कभी बड़े परिवर्तन नहीं आते। हर नई खोज, हर सामाजिक सुधार और हर सफलता के पीछे किसी न किसी का साहस अवश्य होता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए कहा गया है श्रोता साथियों कि साहस है जीवन की पहचान और इसी से हमें सम्मान मिलता है।
1: जी हाँ जागृति जी, एक व्यक्ति तभी स्वतंत्र बनता है जब वह अपने मन के भय को पहचान कर उससे ऊपर उठने का प्रयास करता
0: बिल्कुल।
1: है।
0: बिल्कुल,
1: साहस का मतलब केवल युद्ध लड़ना या बड़े बड़े जोखिम उठाना नहीं है। साहस का अर्थ है सच बोलने का साहस, गलती स्वीकार करने का साहस, बदलाव स्वीकार करने का साहस और सही पक्ष में खड़े होने का साहस और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का साहस।
0: जी हाँ।
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि भय मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है। जब कोई व्यक्ति असफलता से डरता है तो वह नए अवसरों की ओर कदम नहीं बढ़ा सकता जागृति जी।
0: बिल्कुल,
1: जब कोई महिला समाज की आलोचना से डरती है तो वह अपनी प्रतिभा को सामने नहीं ला पाती। जब कोई युवा असफल होने के डर से प्रयास नहीं करता तो उसके सपने अधूरे रह जाते हैं।
0: जी हाँ।
1: जब कोई नागरिक अन्याय देखकर भी चुप रहता है तो समाज में गलत शक्तियां मजबूत हो जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भय केवल व्यक्ति को ही नहीं पूरे समाज को कमजोर बना देता है।
0: बिल्कुल,
1: सच्चा स्वराज हमें सिखाता है जागृति जी कि भय की दीवारों को तोड़े बिना स्वतंत्रता का अनुभव संभव नहीं है।
0: जी हाँ अंजलि, जैसे कि भय की बात कर रहे हैं तो भय मनुष्य की प्रगति को रोक देता है और जब व्यक्ति डरता है तो वो अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग भी नहीं कर पाता।
1: बिल्कुल,
0: कई बार लोग केवल इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें असफल होने का डर रहता है। इसी के साथ श्रोता साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि साहस और आत्मविश्वास एक दूसरे के पूरक है।
1: बिल्कुल,
0: आत्मविश्वास व्यक्ति को विश्वास दिलाता है कि वो कार्य कर सकता है, जबकि साहस उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।
1: जी जी,
0: जब व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा करता है तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी उसे कमजोर नहीं बना पाती, वह चुनौतियों को अवसर के रूप में देखता है। हम कह सकते हैं कि आत्मविश्वास के बिना साहस अधूरा है और साहस के बिना आत्मविश्वास निष्क्रिय है। तो श्रोताओं, दोनों मिलकर व्यक्ति को सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है। आगे भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल,
2: छुप छुप

0: to enjoy evergreen melodious songs from over the years to the latest ones. Subscribe to Filmi Gaane channel.
1: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि भय कैसे छीनता है हमारी स्वतंत्रता, यही बात करें तो श्रोता साथियों, इतिहास गवाह है कि दुनिया में बड़े बदलाव उन्हीं लोगों ने किए जिन्होंने सत्य का साथ देने का साहस दिखाया।
2: जी हाँ।
1: सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, कई बार विरोध झेलना पड़ता है, आलोचना सुननी पड़ती है और अकेलापन भी महसूस होता है। लेकिन जागृति जी, जो व्यक्ति सत्य के लिए खड़ा होता है वो भीतर से मजबूत होता है।
2: जी हाँ।
1: सच्चा स्वराज केवल शासन व्यवस्था का विषय नहीं है बल्कि आत्मशासन का विषय भी है। जब व्यक्ति अपने भीतर सत्य, ईमानदारी और साहस को स्थान देता है तभी वह वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र बनता है।
2: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रमाण है सत्य बोलने का साहस। कई बार लोग गलत बात जानते हुए भी चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें विरोध का डर होता है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है वो अपने आत्मसम्मान को बचाए रखता है।
1: बिल्कुल,
2: सत्य बोलने के लिए साहस चाहिए और यही साहस व्यक्ति को भीतर से स्वतंत्र बनाता है। श्रोता साथियों, सत्य के मार्ग पर कठिनाइयां तो बहुत आती हैं, लेकिन अंततः विजय सत्य की होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवन में हर दिन हमें अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं। कुछ निर्णय आसान होते हैं और कुछ कठिन होते हैं। कई बार लोग गलत निर्णय से बचने के डर से कोई निर्णय नहीं ले पाते, लेकिन निर्णय न लेना भी एक प्रकार की कमजोरी है।
1: बिल्कुल,
2: साहसी व्यक्ति परिस्थिति को समझकर निर्णय लेता है और उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करता है। यही गुण उसे दूसरों से अलग बनाता है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, कई लोग साहस और लापरवाही को एक समझ लेते हैं जबकि दोनों में बहुत अंतर है। लापरवाही बिना सोचे समझे जोखिम उठाना है, जबकि साहस का अर्थ है परिस्थितियों को समझते हुए सही निर्णय लेना।
2: बिल्कुल,
1: साहसी व्यक्ति चुनौतियों से भागता नहीं है बल्कि विवेक और धैर्य के साथ उनका सामना करता है। इसलिए साहस हमेशा जिम्मेदारी के साथ जुड़ा हुआ होता है। परिवार बच्चों का पहला विद्यालय है। यदि परिवार में बच्चों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता मिले, अपनी बात रखने का अवसर मिले और गलतियों से सीखने का माहौल मिले तो जागृति जी, उनमें आत्मविश्वास और साहस दोनों विकसित होते हैं।
2: जी हाँ।
1: जो बच्चे हर समय डर के वातावरण में रहते हैं वे निर्णय लेने से घबराने लगते हैं, लेकिन जहाँ विश्वास और संवाद होता है वहाँ साहसी और जिम्मेदार नागरिक तैयार होते हैं।
2: बिल्कुल,
1: सच्चा स्वराज घर से शुरू होता है। परिवार में स्वतंत्र सोच और साहस का वातावरण समाज को मजबूत बनाता है।
2: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि साहस कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे अभ्यास और अनुभव से विकसित किया जा सकता है।
1: जी जी,
2: छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत करें, अपनी गलतियों

0: को स्वीकार करें श्रोताओं, नई चीजें सीखें, कठिन परिस्थितियों का सामना करें और सकारात्मक सोच को बनाए रखें। जब व्यक्ति बार बार चुनौतियों का सामना करता है अंजलि, तो उसका साहस अपने आप ही बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
0: धीरे धीरे वो बड़े से बड़े कार्य करने में सक्षम हो जाता है। तो श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जीवन में सबसे बड़ी कैद किसी जेल की दीवार नहीं है, बल्कि मन का भय है। जो व्यक्ति डर, संकोच और नकारात्मक सोच से मुक्त हो जाता है अंजलि, वही वास्तविक स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है।
1: जी हाँ,
0: साहस केवल कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति नहीं है, बल्कि अपने सपनों पर विश्वास करने और सही रास्ते पर चलने का संकल्प भी है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए याद रखिए श्रोताओं, स्वतंत्रता हमें बाहर से नहीं मिलती, उसे हमें अपने भीतर जगाना पड़ता है। जब हम भय को हराकर आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी जीवन का वास्तविक अर्थ समझ पाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि हम डर को नहीं, साहस को अपना साथी बनाएं, हार को नहीं, प्रयास को महत्व दें और परिस्थितियों के सामने झुकने के बजाय उनका सामना करें, क्योंकि वही व्यक्ति सचमुच स्वतंत्र है अंजलि, जो अपने मन के भय पर विजय पा लेता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। यही बात करें तो असली स्वतंत्रता किसी दस्तावेज, अधिकार या व्यवस्था से शुरू नहीं होती।
0: बिल्कुल,
1: उसकी शुरुआत हमारे मन से होती है। जब हम भय, संकोच, नकारात्मक सोच और सामाजिक दबावों की बेड़ियों को तोड़ने का साहस जुटाते हैं जागृति जी, तभी स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझ में आता है।
0: बिल्कुल,
1: साहस वह प्रकाश है श्रोता साथियों, जो अंधेरे रास्तों में भी उजाला दे देता है। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों से भागना नहीं है, उनका सामना करना है।
0: जी हाँ,
1: गलत के सामने झुकना नहीं है, सत्य के साथ खड़ा होना है और परिस्थितियों को दोष देना नहीं, बल्कि बदलाव की पहल स्वयं करनी है।
0: जी हाँ,
1: सच्चा स्वराज तब जन्म लेता है जब व्यक्ति अपने भीतर के डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जागृति जी, जो व्यक्ति साहसी है वही स्वतंत्र है, जो स्वतंत्र है वही रचनात्मक है, और जो रचनात्मक है वही समाज में राष्ट्र को आगे बढ़ाने की शक्ति रखते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि असली स्वतंत्रता किसी सीमा, किसी पद या किसी सुविधा का नाम नहीं है। असली स्वतंत्रता वो अवस्था है जब व्यक्ति अपने डर से ऊपर उठ जाता है, अपने मन की कमजोरियों को जीत लेता है और सत्य तथा कर्तव्य के मार्ग पर निडर होकर चलने लगता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि साहस हमें ये विश्वास दिलाता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए, जीवन में अवसर उन्हीं को दिखाई देते हैं जो डर के कारण रुकते नहीं, बल्कि साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। इतिहास भी उन्हीं लोगों को याद करता है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में हार मानने के बजाय हिम्मत का दामन थामा हो। इसलिए अपने भीतर छिपे साहस को पहचानिए, उसे मजबूत बनाइए और हर दिन स्वयं का बेहतर रूप बनने का प्रयास कीजिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम ये भी कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, यदि आप सचमुच स्वतंत्र होना चाहते हैं तो अपने भीतर के डर को हराइए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि दुनिया की सबसे मजबूत दीवारें बाहर नहीं, हमारे मन में होती है। जिस दिन हम उन दीवारों को साहस से गिरा देंगे, उसी दिन हमारे जीवन में स्वतंत्रता, सफलता और आत्मविश्वास का नया अध्याय शुरू हो जाएगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज हम संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने जीवन में साहस, सत्य और आत्मविश्वास को स्थान देंगे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि असली स्वतंत्रता बाहर नहीं, हमारे भीतर छुपी हुई है और उसकी चाबी है साहस। आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में जो बातचीत रही है कि किस तरीके से असली स्वतंत्रता जो है वो साहसी होने में छिपी है, वो हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी। क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज किस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। अंत में सिर्फ आपसे यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है।
1: बिल्कुल,
0: रास्ते आसान हो या कठिन, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो साहस के साथ कदम बढ़ाते हैं। इसलिए डर के अंधेरे को छोड़िए, आत्मविश्वास का दीप जलाइए और जीवन की हर चुनौती का मुस्कुराकर सामना कीजिए।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए, असली स्वतंत्रता किसी उपहार में नहीं मिलती, वो साहस के बल पर अर्जित की जाती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इन्हीं बातों के साथ अब विदा लेते हैं। साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को। नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है मस्तिष्क ट्यूमर को लेकर। जानेंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारे दिमाग में असामान्य जो गांठ हो जाती है उसकी पहचान हम कैसे करें और समय पर उसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति ट्यूमर शब्द सुनता है तो उसके मन में भय पैदा हो जाता है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता और समय पर पहचान और सही उपचार से कई मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं।
1: बिल्कुल,
2: आज हम जानेंगे कि मस्तिष्क ट्यूमर क्या है, इसके क्या लक्षण है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और समय पर जांच क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी होंगी आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
2: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना श्रोता साथियों को पहले गीत सुनवा दें हम।
2: जी हाँ।
0: बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मस्तिष्क ट्यूमर को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी और कशिश, हम देखते हैं मस्तिष्क यानी कि ब्रेन हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जैसे सोचने, समझने, बोलने, याद करने, चलने फिरने और भावनाओं को व्यक्त करने का कार्य है इसका।
1: बिल्कुल।
0: जब श्रोता साथियों मस्तिष्क की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और एक गांठ या असामान्य ऊतक का निर्माण करती हैं, तो इसे मस्तिष्क ट्यूमर कहा जाता है। यह गंभीर स्वास्थ्य समस्या है साथियों, जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है।
2: बिल्कुल।
0: समय पर पहचान और उचित उपचार से कई मामलों में रोगी सामान्य जीवन जी सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। और हम देखते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हमारा अच्छा स्वास्थ्य है।
2: बिल्कुल।
1: देखते हैं कि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तभी हम अपने परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र में बेहतर योगदान दे पाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन दोस्तों कुछ बीमारियां ऐसे भी होती हैं जिनके बारे में लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं होती है।
2: जी जी।
1: और ऐसी गंभीर बीमारी है मस्तिष्क ट्यूमर। श्रोता साथियों, यह बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों में भी इसके मामले देखे जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हालांकि अंजलि जी, हर ट्यूमर जैसा कि आपने बताया कि कैंसर नहीं होता, लेकिन इसका समय पर पता लगाना और उपचार करना बहुत जरूरी होता है।
2: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, मस्तिष्क ट्यूमर के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, जैसे कि सौम्य ट्यूमर और घातक ट्यूमर।
2: बिल्कुल।
1: अगर सौम्य ट्यूमर की बात की जाए तो यह कैंसर युक्त नहीं होता और इसकी वृद्धि अपेक्षाकृत काफी धीमी होती है। लेकिन यहाँ पर बताना चाहेंगे साथियों को कि यदि समय पर इसका उपचार हो जाए तो रोगी पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकता है।
2: जी जी।
1: वहीं जो घातक ट्यूमर होता है वो कैंसर युक्त होता है। श्रोता साथियों, इसकी कोशिकाएं तेजी से बढ़ती है और आसपास के ऊतकों को यह नुकसान पहुंचा सकती है।
2: जी बिल्कुल।
1: हम कह सकते हैं कि इसका जो उपचार है वो काफी अधिक जटिल होता है।
2: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही बात करें कि मस्तिष्क ट्यूमर क्यों होता है, तो श्रोता साथियों सच्चाई यह है कि अधिकांश मामलों में इसका एक अनिश्चित कारण पता नहीं चल पाता।
1: बिल्कुल।
2: कुछ परिस्थितियां जैसे जोखिम बढ़ा

0: होती हैं। कुछ आनुवंशिक कारण होते हैं, अत्यधिक विकिरण के संपर्क में आना, परिवार में बीमारी का इतिहास और कुछ दुर्बल चिकित्सीय स्थितियाँ। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि ट्यूमर किसी के भी जीवन में हो सकता है। इसका हाँ। मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति ने कोई गलती की है। कहना चाहेंगे कि शुरुआती लक्षणों की पहचान करना बहुत जरूरी हो जाता है मनीषा और कशिश, क्योंकि ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है जिसका सही समय पर इलाज न हो तो व्यक्ति की जान भी चली जाती है।
1: बिल्कुल।
0: कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार से हैं, जैसे कि लगातार सिर दर्द होना। सामान्य सिर दर्द ट्यूमर जैसे जुड़े सिर दर्द में अंतर हो सकता है। यदि सिर दर्द लगातार बढ़ रहा है, सुबह अधिक होता है और दवाई से आराम न मिले तो जांच करवाना जरूरी है।
1: हाँ।
0: बार बार उल्टी आना, खासकर बिना किसी पेट की समस्या के लगातार उल्टी होना एक संकेत हो सकता है।
1: हाँ।
0: दृष्टि संबंधित समस्या जैसे कि धुंधला दिखाई देना, दो दो चीजें दिखाई देना, देखने की क्षमता कम होना, इसी के साथ हाथ या पैर में अचानक कमजोरी महसूस होना, संतुलन बिगड़ना भी लक्षण हो सकता है। बहुत से मामलों में हम देखते हैं मनीषा और कशिश, याददाश्त और व्यवहार में भी बदलाव आता है।
1: जी हाँ।
0: कुछ लोगों में भूलने की समस्या, चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई जैसी समस्या दिखाई दे सकती है।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, यदि किसी व्यक्ति को पहली बार दौरा पड़े तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ सामान्य लक्षण है जिसके माध्यम से हम शुरुआत में इसकी पहचान कर सकते हैं और समय पर इलाज करा सकते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ यही अगर हम बात करें कि मस्तिष्क ट्यूमर का रोगी पर क्या प्रभाव पड़ता है,
2: बिल्कुल,
1: तो हम देखते हैं कि शारीरिक प्रभाव की बात करें तो कमजोरी, थकान, चलने फिरने में कठिनाइयाँ और दृष्टि और श्रवण की क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: यही अगर हम मानसिक प्रभाव की बात करें तो हम देखते हैं कि तनाव, चिंता, अवसाद, आत्मविश्वास में कमी दिखाई देती है। शारीरिक प्रभाव को देखें तो हम देखते हैं कि काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: परिवार की आर्थिक स्थिति वो हमें बोझ लगने लगती है, साथ ही हमारा सामाजिक जीवन है वो भी प्रभावित होने लगता है।
0: बिल्कुल,
2: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। तो जैसा कि हम बातें हमारे श्रोता साथियों से कर ही रहे हैं मस्तिष्क ट्यूमर को लेकर, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यहीं अब हमारे श्रोता साथियों के मन में सवाल आ रहा होगा, क्या ये समस्या बच्चों में भी हो सकती है? तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे, हाँ, मस्तिष्क ट्यूमर केवल बड़ों की बीमारी नहीं है, बच्चों में भी यह पाया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों में कुछ संकेत हो सकते हैं, जैसे कि लगातार सिर दर्द होना, पढ़ाई में अचानक कमजोरी, बार बार उल्टी, संतुलन बनाने में कठिनाई, व्यवहार में बदलाव। ऐसी स्थिति में माता पिता को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि सिर दर्द तो आम बात है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन जब लक्षण लंबे समय तक बने रहे तब जांच आवश्यक हो जाती है। जी हाँ, हमें चिकित्सक परामर्श लेकर पता करना चाहिए कि हमारा जो सिर दर्द हो रहा है उसका कारण क्या है। जितनी जल्दी बीमारी का पता चलता है श्रोता साथियों, उपचार की संभावना उतनी ही बेहतर होती है। इसी के साथ कहना चाहेंगे मनीषा और कशिश कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कि हमारे समाज में आज भी गंभीर बीमारियों को लेकर कई मिथक मौजूद हैं।
1: बिल्कुल,
0: कुछ लोग बीमारी छिपाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। हमें यह सोच बदलनी होगी, बीमारी कोई शर्म की बात नहीं है, जागरूकता, समय पर जांच और सही उपचार ही सबसे बड़ा समाधान है।
2: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर हम बात करें कि परिवार की इसमें क्या भूमिका होती है, तो हम देखते हैं कि मस्तिष्क ट्यूमर से पीड़ित व्यक्ति को परिवार के सहयोग की अधिक आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल,
2: परिवार रोगी को मानसिक सहारा देता है, समय पर दवाया दिलाना, सकारात्मक वातावरण बनाए रखना, साथ ही डॉक्टर की सलाह का पालन करवाना, और श्रोता साथियों वो जो रोगी व्यक्ति है उसको पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना।
1: बिल्कुल,
2: यहीं अगर हम बात करें कि मस्तिष्क ट्यूमर और जागरूकता का क्या संबंध है, तो हम देखते हैं कि कई लोग शुरुआती लक्षण को सामान्य सिर दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही लापरवाही बीमारी का गंभीर कारण बन जाती है। श्रोता साथियों, लगातार सर दर्द हो रहा है तो हमें हल्के में नहीं लेना है, बार बार दौरे पड़ने पर हमें तुरंत जांच करवानी है, साथ ही हमें दृष्टि और स्मृति में बदलाव को गंभीरता से लेना है, नियमित स्वास्थ्य की जांच भी हमें करवानी है।
1: जी हाँ मनीषा, इसी के साथ अगर बात करें मस्तिष्क ट्यूमर और मानसिक स्वास्थ्य की, तो हम देखते हैं अंजलि जी और मनीषा की, ब्रेन ट्यूमर केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता,
0: बिल्कुल,
1: बल्कि मानसिक और भावनात्मक जीवन पर भी असर डालता है। हम देखते हैं कि इस दौरान रोगी में डर, चिंता, अवसाद और आत्मविश्वास की कमी देखी जाती है। ऐसे समय में अंजलि जी, परिवार का सहयोग रोगी के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है।
0: बिल्कुल,
1: श्रोता साथियों, हमें रोगी को सकारात्मक वातावरण, भावनात्मक समर्थन, नियमित चिकित्सा सलाह देनी चाहिए।
0: बिल्कुल कशिश, याद रखना होगा श्रोता साथियों को कि हर सिर दर्द मस्तिष्क ट्यूमर नहीं होता, हर ट्यूमर जीवन का अंत नहीं होता। डर और अफवाहों से दूर रहकर यदि हम सही जानकारी प्राप्त करें, समय पर चिकित्सीय सलाह लें और सकारात्मक सोच बनाए रखें, तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना ही स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि मस्तिष्क ट्यूमर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, लेकिन समय पर पहचान, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और मजबूत मनोबल के साथ इसका प्रभावी उपचार संभव है। हमें अपने शरीर द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लगातार सिर दर्द, दृष्टि में बदलाव, बार बार उल्टी, याददाश्त में कमी या शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। एक जागरूक समाज वही है श्रोता साथियों, जो बीमारी से नहीं बल्कि अज्ञानता से लड़ता है। आइए हम स्वयं जागरूक बने और अपने परिवार, समुदाय को भी जागरूक करें। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को छिपाने के बजाय उनका समय पर समाधान खोजें। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज ही विकास की असली पहचान है।
2: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं, और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल, हाँ।
2: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल, बिल्कुल।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यही समाप्त होता है। अंत में साथियों आपसे यही कहना चाहेंगे कि मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है।
1: बिल्कुल,
0: इसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। ऐसे में किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज आप न करें, समय पर जांच कराएं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, क्योंकि जागरूकता ही सुरक्षा का पहला कदम है।
1: बिल्कुल,
0: इसी सकारात्मक संदेश के साथ दोस्तों अब हम कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: बिल्कुल,
0: तो दोस्तों आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
2: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ श्रोता साथियों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर को,
2: और आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को,
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेषर को।
0: नमस्कार।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर एक नए प्रेरणादायक विषय के साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर आते हैं तो एक नए विषय को लेकर बातचीत करते हैं, जो हमारे जीवन हमारे सपनों को एक नई उड़ान देता है। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ रहा है। साथियों, आज हम जिस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं वो विषय काफी महत्वपूर्ण है और काफी गंभीर भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकतर लोग इस समस्या से पीड़ित होते हैं। जी हाँ साथियों, बात कर रहे हैं निराशा से बाहर कैसे निकलें। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो निराशा होती है वो हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं साथियों अपने लक्ष्य तक पहुंचने की, लेकिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से हम अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बल्कि असफल हो जाते हैं और फिर हमारे पास निराशा ही बचती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगी कि जब हम निराश हो जाते हैं तब हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है, हमारा खुद पर विश्वास खो जाता है साथियों, जिसके कारण हम फिर से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी कि ये निराशा की समस्या क्या है और इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो साथियों पहले मनोरंजन कर लेते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों, आज का विषय काफी महत्वपूर्ण है और गीत से पहले मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बता दी थी कि आज हम जिस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं वो है निराशा से बाहर हम कैसे निकलें। साथियों, जैसा कि गीत से पहले बताया था कि निराशा जो है वो धीरे धीरे इंसान के आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। लेकिन दोस्तों, जब ऐसा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और आगे अब कुछ अच्छा होगा भी नहीं। लेकिन दोस्तों, ये जो चीज है वो सच नहीं है। आपको बताऊं तो जीवन में अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सुबह जरूर आती है। साथियों, निराशा स्थायी नहीं होती, बस हमें उससे बाहर निकलने का रास्ता समझना होता है कि हम उस निराशा से बाहर कैसे निकलें। तो साथियों, अब जानते हैं कि निराशा आखिर होती क्या है। दोस्तों, अगर आपको बताऊं तो निराशा वह स्थिति है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है किसी भी कार्य को करने की। उसे ऐसा लगता है कि इस कार्य में अगर उसको असफलता मिल रही है तो वो आगे दूसरे जो कार्य है वो भी नहीं कर पाएगा और वो निराश होकर बैठ जाता है। साथियों, उसे ऐसा लगने लगता है कि उसकी मेहनत बेकार है, उसके सपने अब कभी पूरे नहीं होंगे और उसकी जिंदगी में अब खुशी बची ही नहीं है। साथियों, ये जो भावना है वो धीरे धीरे हमारे मन पर भी असर डालती है। हम देखते हैं कि हम निराश होकर लोगों से दूर होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम गुस्सा करने लगते हैं, हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है और इससे हमारा आत्मविश्वास भी कमजोर पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए समझना ये जरूरी है कि निराशा कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो जीवन की एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य स्थिति है साथियों, जिससे हर इंसान को एक न एक दिन जरूर गुजरना पड़ता है। साथियों, बस फर्क इतना होता है इसमें कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निराश न होकर फिर से उठने का प्रयास करते हैं और हमें उन्हीं लोगों जैसे बनना है। दोस्तों, हम देखते हैं कि निराशा आने के ढेर सारे कारण होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हम बार बार असफल हो जाते हैं। साथियों, जब मेहनत के बाद भी सफलता हमें कभी नहीं मिलती है तो इससे हमारा मन टूटने लगता है और हम खुद को ही कोसने लगते हैं और ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ या मैं अब उस कार्य को करूँगा तो मुझे सफलता नहीं मिलने वाली है, तो हम उस कार्य को छोड़ देते हैं। साथ ही कई बार दूसरों से तुलना करना भी एक कारण हो सकता है साथियों निराश होने का। जैसे कि आज के समय में हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करने लगे हैं। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं लोगों के लाइक्स को, फॉलोवर्स को और फिर उनके जिंदगी से अपनी जिंदगी की कंपैरिजन करने लगते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि यार इसके पास तो ये है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इसके पास ये है, इसके पास वो है और मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशियों को देखकर हम खुद को क्यों कमजोर समझते हैं, ये तो गलत बात है। तुलना करने से दोस्तों हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण भी हमें असफलता मिलती है और हम निराश हो जाते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों से खुद की तुलना न करें, आप खुद बेस्ट हैं और आपका काम भी बेस्ट है। श्रोता साथियों, इसी के बाद अकेलापन भी एक कारण हो सकता है, जैसे कि जब इंसान अपनी बात किसी से साझा नहीं कर पाता श्रोता साथियों, तो उसके अंदर नकारात्मक विचार बढ़ने लगते हैं और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो अब अकेला है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं है, जिसके कारण भी वह निराश हो जाता है। साथ ही कई बार आने वाले समय का डर भी दोस्तों निराशा को आमंत्रित कर देता है। साथ ही लोगों की जो उम्मीदें होती हैं और जो ताने होते हैं वो भी दोस्तों हमें अंदर से कमजोर कर देते हैं, जिसके कारण भी हम अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रता से नहीं बढ़ पाते हैं और हमें निराशा ही प्राप्त होती है। इसलिए श्रोता साथियों, ये जो सभी कारण है निराशा आने के, उन सभी कारणों को हमें समझने की आवश्यकता है और इन कारणों से बचने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जब निराशा से हम बाहर निकलना चाहते ही हैं तो इन कारणों को समझकर ही हम निराशा से बाहर निकल सकते हैं। तो कार्यक्रम के माध्यम से जैसा कि बातें मेरी आपसे बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी होंगे ये बातें, आगे हम जानेंगे साथियों कि निराशा से बाहर हम कैसे निकले और निकलना जरूरी क्यों है, तो और भी बातें जरूर होंगी। लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं साथियों एक प्यारे से गीत के साथ में। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर और वागड़ रेडियो 90.8 FM जैसा कि आप सभी सुन रहे हैं। विषय बातचीत का बहुत अच्छा चल रहा है कि निराशा से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो साथियों, आपको बताना चाहूंगी कि अगर निराशा लंबे समय तक बनी रहती है तो ये हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ सोच और रिश्तों पर भी असर डालती है। हम अपनी क्षमता पर विश्वास खोने लगते हैं और निराशा जो है वो हमें आगे बढ़ने से भी रोकती है साथियों, जबकि जीवन का नियम तो ये है कि हमेशा चलते रहिए। दोस्तों, अगर देखे तो पक्षी हर तूफान से डर जाए तो वह उड़ना छोड़ देगा। अगर किसान एक बार फसल खराब होने के बाद खेती छोड़ दे तो फिर कभी अन्न नहीं उगेगा। इसी तरह दोस्तों, इंसान को भी कठिन समय में खुद को संभालना सीखना पड़ता है। तो श्रोता साथियों, हमें निराशा से तो बाहर निकलना ही होगा। इसके लिए हमें कुछ उपाय अपनाने होंगे, जैसे कि सबसे पहले तो आप मी टाइम को महत्व दें, यानी कि खुद को समय दें। श्रोता साथियों, सबसे पहले आप ये समझ लें कि मुश्किल समय बार बार नहीं आता, हमेशा नहीं रहता। अपने मन को थोड़ा सा समय दे साथियों। हर बात का समाधान तुरंत नहीं मिलता है, धीरे धीरे ही परिस्थितियाँ बदलती हैं, इसलिए खुद को समय देना बहुत जरूरी है। साथ ही मन की बात अंदर दबा कर रखने से दुख बढ़ सकता है। ऐसे में आप अपने परिवार, मित्र या फिर किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी परेशानी को साझा कर सकते हैं। कई बार श्रोता साथियों, सिर्फ दिल की बात कह देने से भी मन हल्का हो जाता है। इसी के साथ छोटी छोटी खुशियों को भी आप महत्व दें, जैसे कि निराशा में इंसान दोस्तों खुशियों को देखना बंद कर देता है, लेकिन दोस्तों खुशियों से ही जीवन सुंदर बनता है। सुबह की ताजी हवा, बच्चों की मुस्कान, परिवार के साथ समय बिताना, प्रकृति की सुंदरता, दोस्तों ये सभी मन को एक नई ऊर्जा देते हैं। इसलिए हमें छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण, खुद की तुलना करना बंद कर दें, क्योंकि दोस्तों हर इंसान की जिंदगी अलग होती है। किसी का संघर्ष दिखाई नहीं देता तो किसी का संघर्ष बहुत ज्यादा दिखाई देता है। इसलिए खुद को दूसरों से कम समझना गलत है। अपनी मेहनत और अपनी यात्रा पर ध्यान दें। आप अपने लक्ष्य पर एकाग्रता से बढ़ते रहिए। साथ ही लोग क्या कहेंगे, इस परेशानी का भी हल है साथियों कि आप लोगों की बात ही ना सुने, क्योंकि दोस्तों आप अगर अच्छा करेंगे तो भी आपको लोग बोलेंगे और आप अच्छा नहीं करेंगे तो भी लोग बोलेंगे। इसलिए हमेशा अपने एकाग्र शक्ति को बढ़ाते रहिए, अपने लक्ष्य पर फोकस करिए कि आप क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं। अगर इस पर आप ध्यान देंगे तो आप क्या चाहते हैं ये आप भूल जाएंगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ ही आप रहें, क्योंकि दोस्तों जैसा वातावरण होता है वैसे ही हमारी सोच बनने लग जाती है। अगर हम हमेशा नकारात्मक बातें सुनेंगे तो मन और भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको हिम्मत दे, ना कि आपकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करें, जो आपकी प्रेरणा बने श्रोता साथियों। इसलिए सकारात्मक लोगों का साथ भी जरूरी है। इसी के साथ आप अपने शरीर का भी ध्यान रखें, क्योंकि कई बार हम तनाव में रहते हैं तो इसका हमारा जो प्रभाव है वो हमारे स्वास्थ्य पर सीधा सीधा देखने को मिलता है। इसलिए याद रखें दोस्तों कि स्वस्थ शरीर में ही मजबूत मन बनता है। इसलिए समय पर भोजन करें, पर्याप्त नींद लें, सुबह टहलें और थोड़ा व्यायाम करें। प्रकृति के बीच समय बिताना भी मन को शांति देगा दोस्तों, इसलिए आप ये भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि निराशा जीवन का अंत नहीं है, यह सिर्फ एक कठिन पड़ाव है जो हमें मजबूत बनना सिखाता है। हमें ऐसे में याद रखना है कि अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आएगी। अगर मन में उम्मीद जिंदा है दोस्तों, तो हम हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए कभी हार मत मानिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए, खुद पर भरोसा रखिए साथियों, और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जिंदगी उन्हीं की होती है जो गिरकर फिर से उठना जानते हैं। जी हाँ साथियों, इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो दोस्तों, विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी यहाँ पर एक प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। अंत में आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि दोस्तों, जीवन में कभी भी ऐसा समय आ सकता है जब आपको सब कुछ मुश्किल लगे, लेकिन आपको याद रखना है कि कोई भी परेशानी हमेशा नहीं रहती। निराशा हमें रोक सकती है साथियों, लेकिन अगर हमारे अंदर उम्मीद है तो फिर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है साथियों, इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, अपने सपनों को मत छोड़िए, कठिन समय में भी मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी, क्योंकि जो इंसान अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी ढूंढ लेता है वह जीवन में सचमुच उड़ान भरता है। दोस्तों, इसी सकारात्मक सोच के साथ अब दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति। उम्मीद करती हूँ साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, कार्यक्रम सपनों की उड़ान। कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए उड़ान भरे विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
0: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
1: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
0: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें। महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ है।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनो, आ लक्षण आपने आपने मैं देखा है तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरी निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।